सुपर बात आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 15, तदनुसार 5 जून 2026। सुबह के 5:58 और 35 सेकेंड हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। अब हमारा आज का ये प्रसारण आरंभ होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, बस कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी रांची है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया इंतजार करिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर

करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों ज्यों सेवा की जाती है त्यों त्यों उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं, उसका अंत नहीं होता। वस्त्र सत्य भाषण व सत्य पालन के अमित फल होते हैं। हमारा जीवन भी एक वृक्ष है। इस वृक्ष में यदि सच्चरित्रता रूपी फूल न लगा हो तो निश्चय जानिए इसमें महानता रूपी फल कदापि न लगेगा। इस एक फूल की सुगंध से संपूर्ण जीवन सुरभित हो उठता है और आत्मा दिव्य प्रकाश से चमक उठती है। कबीरदास ने ठीक ही कहा था, सांच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। गांधी जी की सत्यनिष्ठा इस बात से साफ जाहिर है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, तथा भारत को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया उसे सत्याग्रह का नाम दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन से एक बार किसी ने पूछा, महानता का सर्वप्रधान लक्षण क्या है? उन्होंने झट कहा, सच्चरित्रता। इतिहास लिंकन के इस उत्तर की पुष्टि करता है। ऐसी सच्चरित्रता जिसे पाकर इंसान भगवान बन जाता है में कई गुणों का समावेश रहता है। सत्यवादिता सच्चरित्रता का पहला लक्षण है। सच्चरित्र व्यक्ति अपने जीवन में कहीं भी असत्य को स्थान नहीं देते, इसी कारण वे निडर और अजेय होते हैं। भले ही वह शरीर से क्षीण हो या अन्य भौतिक शक्तियां उसके पास न हो, पर आत्मविश्वास का कवच धारण कर और स्वाभिमान की ढाल लेकर जब वह आगे बढ़ता है तो पहाड़ उसके रास्ते से अलग हट जाते हैं, समुद्र भी उसके पथ का बाधक नहीं बनता, आसमान उस पर फूलों की वर्षा करता है, विपत्तियां उसे देखकर सहम जाती हैं, विजयश्री उसके गले में वरमाला डालती है। गांधी जी देखने में एक साधारण व्यक्ति थे, शारीरिक बल अत्यंत साधारण और पढ़ने लिखने में भी साधारण। हाँ, सत्य के प्रति विशेष अनुराग था तथा इसी शक्ति के आधार पर उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। बालक गांधी ने जिस धरती पर जन्म लिया था वह गुलामी के बंधनों में जकड़ी हुई थी, पर उस बालक ने बड़े होकर अपनी सच्चरित्रता

0: वह चरित्र बल के सहारे उस शक्तिशाली ब्रिटिश हुकूमत जिसके शासन में कहते हैं कभी सूर्यास्त न होता था को भी अपने सत्याग्रह के सामने झुका दिया। सत्य में कितना बल है इसका इससे सुंदर प्रमाण और क्या हो सकता है। जब सच्चरित्रता की आभा से व्यक्ति का व्यक्तित्व दीप्त हो उठता है तो वह स्वार्थ के धरातल से ऊपर उठकर स्वयं को लोक के साथ एकाकार कर देता है। तब लोक का सुख दुख उसका सुख दुख बन जाता है। लोक कल्याण के लिए ही वह जीता है। गांधी जी ने अपना समस्त जीवन राष्ट्र व लोक कल्याण में लगा दिया था तथा एक कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें उनकी इस सेवा से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता की संज्ञा से विभूषित किया। निसंदेह वे राष्ट्रपिता थे। एक पिता जिस तरह अपनी संतान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है उसी तरह गांधी जी ने भी राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना जीवन होम कर दिया। सत्य ही उनके लिए परमेश्वर था और एक सच्चरित्र जीवन वहां तक पहुंचने का साधन। अपनी कर्तव्य निष्ठा व सत्य निष्ठा के कारण जो साधारण मानव से महादेव बने थे वे ही थे मोहनदास करमचंद गांधी। महाकवि दिनकर ने उनकी महानता को इन शब्दों में प्रणाम किया। तू कालो दधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु, बापू तू मर्त अमर्त स्वर्ग, भूनभ का महासेतु।
1: श्रोता सुन रहे थे आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं 6:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना। आगाज कर रहे हैं हरि के इस भजन के साथ।

चैनल निगम और साथियों की आवाजों में श्रोता सुन रहे थे ये भक्ति रचना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन।

सुभेंदर सिंह और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। श्रोताओं, कार्यक्रम का लीजिए ये आखिरी भक्ति रचना हम आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम है भक्ति संगीत का वंदना।

0: जिन श्रोताओं तो सुरेश आनंद के गए इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है। आपका आज का दिन शुभ हो इसी शुभकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।
1: सावन का ये महीना भोले के मन।
0: श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं 6:40 और 10 सेकंड हो रहे हैं। वक्त हो चला है श्री रामचरित मानस गान के आज के कड़ी सुनने का। आइए सुनते हैं आज की कड़ी श्री रामचरित मानस गान की।

काक फुशुंडी से श्री रामचरित और स्वयं उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु एक प्रश्न फिर भी उनके मानस में कौंध किया। प्रश्न था कि संत, ऋषि मुनि, वेद सभी ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धि बताते हैं, किंतु काकभुशुंडी ज्ञान को भक्ति का सा स्थान नहीं देते। ज्ञान और भक्ति में कितना और क्या अंतर है? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भौतिक दुख दैन्य मिटाने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं, जिसका प्रताप प्रबल होता है। इसके विपरीत माया और भक्ति स्त्री वर्ग की हैं। ज्ञानी मुनि भी चंद्रमुखी हिरण सी आंखों वाली स्त्री का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। उधर माया दूसरी स्त्री अर्थात भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। रघुनाथ जी को भक्ति अधिक प्रिय है, अतः माया भक्ति से सदा भयभीत रहती है और उस पर हावी नहीं हो सकती।

कथा से रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है फिल्म 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं 6:51 हो चुके हैं, लीजिए पेश है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। 7:20 पर होगा कार्यक्रम काव्यधारा। 7:30 पर सुनिए गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार सुना जा सकता है 8:45 पर। हमारे रांची केंद्र से समाचार श्रोताओं प्रादेशिक समाचार सुबह 8:30 से रिले किया जाएगा हमारे रांची केंद्र से।

आठ पैंतालीस पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक होगा। विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। सुबह 11 बजे से लेकर 11:58 तक आप सुन सकेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

संध्या 4:30 पर सुनिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारा आज का प्रायोजित कार्यक्रम। 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबारी। संध्या 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 पर कार्यक्रम अंगना।

छह बजकर 30 मिनट पर सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत, 6:55 पर प्रादेशिक समाचार रिले किया जाएगा हमारे रांची केंद्र से।

कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लोकगीतों के इस कार्यक्रम में सबसे पहला खोटा लोकगीत आपने सुना सत्येंद्र कुमार मिश्रा के स्वर में, और आप सुन रहे हैं सुनंदन पांडे गरीब के स्वर में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

जय शुभ तो शिवनंदन पांडे गरीब के गाए इसी खोटे लोकगीत के साथ अब आज का लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे भी ढेर सारे कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:21 हुए हैं। श्रोताओं, आज है शुक्रवार और आज के दिन कार्यक्रम हमारा होता है साप्ताहिक कार्यक्रम काव्य धारा कविताओं को। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित पीयूष कुमार की कुछ कविताएं, आइए सुनते हैं।

मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आज की कविता ऐसे विषय पर है जो हमारे देश के गौरव हैं। हमें अपने संस्कृति से, प्रकृति से बहुत लगाव होता है। हम अपने वीर सैनिक पर बहुत गौरवान्वित होते हैं। आज़ादी के समय बहुत लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, देश की खातिर फांसी पर चढ़े, गोलियाँ खाई। इसलिए जब भी हम आज़ाद भारत की व्याख्या करते हैं तो अहम भूमिका में देश के वीर जवान होते हैं। तो उन्हीं को लेकर मैं खुद में ये कहता हूँ कि द्वेष लिखो, प्रेम लिखो, द्वेष लिखो, प्रेम लिखो, तुम रोज मन की पीर लिखो, द्वेष लिखो, प्रेम लिखो, तुम रोज मन की पीर लिखो, पर कलम जब जब दहाड़ेगी तुम भारत माँ के वीर लिखो, पर कलम जब जब दहाड़ेगी तुम भारत माँ के वीर लिखो। हर हिंदुस्तानी खुद को रांझा कह, हर हिंदुस्तानी खुद को रांझा कह, वतन को अपनी हीर लिखो, लिखो ऐसे जैसे सिर दहाड़े, लिखो ऐसे जैसे सिर दहाड़े, तुम शब्द शब्द शमशीर लिखो, करो समर्पण खुद को देश की खातिर, करो समर्पण खुद को देश की खातिर, आज़ादी की तहरीर लिखो और लिखो पर्वत पहाड़ों को, लिखो पर्वत पहाड़ों को, बहती गंगा की नीर लिखो और नमन करो इस मिट्टी को, नमन करो इस मिट्टी को, कणकण को कश्मीर लिखो और रखो तमन्ना शहादत की, रखो तमन्ना शहादत की, लहू से अपनी तकदीर लिखो, सत्य अहिंसा को स्वीकारो, सत्य अहिंसा को स्वीकारो, नहीं तो खुद को अधीर लिखो और लिखो उन शहीदों को, लिखो उन शहीदों को आभूषण में जंजीर लिखो, साहस शांति बलिदान की खातिर, साहस शांति बलिदान की खातिर, जो लड़े उनको सुरवीर लिखो और लिखो एक एक आजादी को, लिखो एक एक आजादी को, धरती का सीना चीर लिखो, खूबसूरती इसकी दुनिया डंका पीटे, खूबसूरती इसकी दुनिया डंका पीटे, ऐसी भारत की तस्वीर लिखो, लहराती प्रकृति भरत खंड की, लहराती प्रकृति भरत खंड की, इन्हें कभी रहीम तो कभी कबीर लिखो और बच्चा बच्चा इस मिट्टी को चूमे, बच्चा बच्चा इस मिट्टी को चूमे, ऐसी इनकी तकदीर लिखो, कलम की स्याही जब सत्य पर बरसे, कलम की स्याही जब सत्य पर बरसे, तब आत्मा को अपनी धीर लिखो, तब आत्मा को अपनी धीर लिखो। मेरी दूसरी कविता उन पर है जो हमारे देश के जीवन रक्त हैं, जिनके वजह से हम स्वस्थ और जीवित रहते हैं, जो हर वक्त खेत खलिहान से प्रेम करते हैं, देश के खातिर, देश के लोगों के खातिर वे मेहनत करते हैं। उनका जीवन बहुत कठिनाई भरा होता है, फिर भी वो धरती माँ को पूजकर पूरे साल अन्न उगाते हैं। तो आइए हम उनके लिए कुछ दुआएं करते हैं कि चुमकर इस मिट्टी को फिर से तूने जगाया है, चुमकर इस मिट्टी को फिर से तूने जगाया है, बंजर पड़ी जमी को तूने उपजाऊ बनाया है, चुमकर इस मिट्टी को फिर से तूने जगाया है, बंजर पड़ी जमी को तूने उपजाऊ बनाया है, पास तेरे हरदम आसमां का प्यार हो, पास तेरे हरदम आसमां का प्यार हो, जय हो किसान तेरी सदा जय जयकार हो, जय हो किसान तेरी सदा जय जयकार हो। जिंदगी की कश्मकश में अपना पेट जलाया है, जिंदगी की कश्मकश में अपना पेट जलाया है, अपने तो अपने परायों को भी रोटी तूने खिलाया है, कि जिंदगी की कश्मकश में अपना पेट जलाया है, अपने तो अपने परायों को भी रोटी तूने खिलाया है, भूख मिटाने के दौर में जीत तेरी हजार हो, जय हो किसान तेरी सदा जय जयकार हो, जय हो किसान तेरी सदा जय जयकार हो। सुख चैन सब त्याग कर मेहनत में जीवन बिताता है, सुख चैन सब त्याग कर मेहनत में जीवन बिताता है, सोच कर वो सूरज भी न रोशनी पर इतराता है, सुख चैन सब त्याग कर मेहनत में जीवन बिताता है, सोच कर वो सूरज भी न रोशनी पर इतराता है, इस अस्त व्यस्त से जीवन में तेरा भी सुखी संसार हो, जय हो किसान तेरी सदा जय जयकार हो, जय हो किसान तेरी सदा जय जयकार हो। छत से टपकता पानी फिर भी बारिश के गुण गाता है, छत से टपकता पानी फिर भी बारिश के गुण गाता है, धूप आए या तूफान आए हरदम अडिग रह जाता है,
छत से टपकता पानी फिर भी बारिश के गुण गाता है, धूप आए या तूफान आए हरदम अडिग रह जाता है। हिम्मत को तेरी गुणगान बारंबार हो, जय हो किसान तेरी सदा जय जयकार हो, जय हो किसान तेरी सदा जय जयकार हो। आज की मेरी आखिरी कविता एक नया भारत को लेकर है, वह भारत जिसका गुणगान पूरा विश्व करता है। आज भी हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ है और हरदम रहेगा। जो मेरी अपनी विचारधारा है उसको लेकर मैं अपनी कविता से आपको अवगत कराता हूं कि आजाद हिंदुस्तान अब प्रकाश में होगा, आजाद हिंदुस्तान अब प्रकाश में होगा, सबके दिल सबके विश्वास में होगा। आजाद हिंदुस्तान अब प्रकाश में होगा, सबके दिल सबके विश्वास में होगा। शाम सवेरे बजेगी अब प्रेम की बंसी, शाम सवेरे बजेगी अब प्रेम की बंसी, उगता सूरज भी अपने पास में होगा। घबराएंगे ना किसी बात से, करेंगे सामना डटकर, घबराएंगे ना किसी बात से, करेंगे सामना डटकर, चूमे हैं इस मिट्टी को साहस हर एक सांस में होगा। घबराएंगे ना किसी बात से, करेंगे

0: वीरों का सम्मान दुश्मनों के नाश में होगा, और अब जब भी कोई टकराएगा हमसे, और अब जब भी कोई टकराएगा हमसे, बाद उसके पड़ा वो सफेद लिबास में होगा, बाद उसके पड़ा वो सफेद लिबास में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: पीयूष कुमार की कविताएं सुन रही थी श्रोता, कार्यक्रम था काव्यधारा। तो इसी के साथ पूर्व प्रसारित इसी कविता के साथ अब आज का काव्यधारा कार्यक्रम समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, 7:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। आगाज कर रहे हैं आशा भोसले के गाए इस गैर फिल्मी रचना के साथ।

आशा भोसले के स्वर में आप सुन रहे थे गैर फिल्मी रचना गैर फिल्मी अनुभव के गीतों का कार्यक्रम की संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मधुबनी की आवाज में श्रोता सुन रहे थे यह गैर फिल्म रचना। गैर फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम की संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: जज्बात का रिश्ता है जो बाकी सब रिश्तों से बड़ा होता है। इन्हीं जज्बात को हम गजल की जबान में मोहब्बत कहते हैं। अर्ज है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता।

0: आती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका

0: विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
0: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ

0: उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है।

0: Under-18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित। भाजपा की पहली सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए निर्देश। विकास कार्यों में तेजी लाने पर दिया जोर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक। झारखंड में 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना। और धनबाद में आज से झारखंड राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का होगा चयन। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। हालांकि इस सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं बजटीय प्रावधानों और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नवाचार आधारित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। विभाग के सचिव ने बताया कि इनोवेटिव स्कीमों की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत चयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट से भोजपुरी मगही और मैथिली को हटाए जाने के मुद्दे पर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मंत्रियों के बीच समन्वय की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार की आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि सरकार इस मामले में एकमत नहीं दिख रही है।
3: तो यहाँ पर सरकार में एक मंत्री कुछ कह रहा, दूसरा मंत्री कुछ और कह रहा है। भाषा का विवाद झारखंड में खड़ा हो रखा है या विवाद जानबूझकर के मूल जो मुद्दे है उसको भटकाने के लिए तैयार किया गया। आप किसी भी स्टेट में लैंग्वेज पॉलिटिक्स देखते, कोई फैसला लिया गया है तो उसके पहले प्रॉपर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है जिसमें प्रोफेसर होते हैं, लैंग्वेज के जानकार होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद उस कमेटी के फैसले के दम पर कोई भी फैसला लिया जाता है।
2: वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद जताई है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र मुख्यमंत्री को सौंपेगी और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
4: कमिटी के प्रतिवेदन के बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी, तो हमें लगता है कि अभी प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया अभी जब तक खत्म ना हो तब तक भारतीय जनता पार्टी विधवा विलाप करना छोड़ दे। जांच के पहले किसी को अपराधी घोषित कर देना, प्रक्रिया चल रही हो उस पर बयान दे देना और फिर बाद में बैकफुट पे आ जाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है।
2: विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए रांची में 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां बीएलओ सुबह 8 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बीएलओ और सुपरवाइजरों को गंभीरता से कैंप चलाने, शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने बूथ पर जाकर मैपिंग जरूर कराएं। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ईसीआई नेट के उपयोग को लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण के विभिन्न चरणों में ईसीआई नेट के प्रभावी उपयोग और डेटा प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की। आयोग के विशेषज्ञों ने प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर

0: विस्तृत मार्गदर्शन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय की योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड के विभिन्न जिलों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर वन प्रमंडल और एलिफेंट प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से दो मुहानी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। दिल्ली में हाल ही में हुई अग्निकांड की घटना के बाद बोकारो जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
2: पहला तो ये है कि उनका परमिशन चेक किया जाएगा। दूसरा ये देखा जाएगा कि वहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीढ़ियों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें रख दी गई हैं जिससे जाम हो गया है। इमरजेंसी एग्जिट पे ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ सारी सामान रख देते हैं। मैंने इसका स्वयं देखा, महसूस किया है कि जो इमरजेंसी फायर एग्जिट है वहीं पर सामान रखे हुए हैं। फायर सेफ्टी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी इस जाँच टीम में रहेंगे।
0: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं।
3: इन लोगों को पकड़ा गया, इसमें दो लोग हैं, जो एक है जाहिद हुसैन उर्फ विक्की जो सलाई का रहने वाला है और एक मोहम्मद रेहान हुसैन है जो सलाई क्षेत्र का। तो ये दोनों लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए। इनके पास से लोहे का एक पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल सेट इनके द्वारा इनके माध्यम से प्राप्त किए गए।
0: और अब मौसम। केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने के बाद अब झारखंड में इसके आगमन का इंतजार है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 17 से 20 जून के बीच संताल परगना क्षेत्र के रास्ते मॉनसून के प्रवेश की संभावना है। धनबाद के डॉक्टर जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में झारखंड राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन आज शाम 5 बजे होगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ और धनबाद जिला कबड्डी संघ द्वारा एसपी क्लब के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य की 36 महिला पुरुष टीमें और 30 तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का चयन किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने इस पर लिखा है, मशीन से निकला धुआं और आईसीयू में लगी आग, 5 लोगों की मौत। दैनिक भास्कर के लीड है, दिल्ली के होटल अग्निकांड में बोकारो की सुरभि की मौत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा प्रत्येक जिले में एक आईटीआई बनेगा मॉडल। हिंदुस्तान लिखता है, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का निधन। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित। भाजपा की पहली सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए निर्देश, विकास कार्यों में तेजी लाने पर दिया जोर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक, झारखंड में 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना। और धनबाद में आज से झारखंड राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज, प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का होगा चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: साथियों, अब हमारा

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, 8:44 और 35 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी बस कुछ ही पलों में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी सुन रहे सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं को अशोक का नमस्कार और साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें और इसके लिए आवश्यक है कि हरे पेड़ पौधों की हम सुरक्षा उसी प्रकार से करें जैसे कि अपने बाल बच्चों की और परिवार का भरण पोषण और सुरक्षा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम आगे के कार्यक्रम में आपको देंगे। फिलहाल कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज है और फिल्म का नाम है छोटी बहू।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

शुद्ध कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी के अंतर्गत आज हमने जिन फिल्मों के गीत सुनवाए उनके नाम इस प्रकार हैं, छोटी बहू, हिमालय की गोद में और अमर प्रेम। आवाजें क्रमशः किशोर कुमार, मुकेश और किशोर कुमार की थी। तो इसी खूबसूरत से गीत के साथ अब आज का मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम से अपने दोस्त अशोक को फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को हैं। अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे हमारे मुंबई केंद्र से सुबह 10 बजे तक। तो कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और चित्रलोक में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में समीर का लिखा और नदीम श्रवण के बनाई धुन पर ये गीत। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA। यह दिवस PSMA की भी वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अवैध मछली पकड़ने से निमटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवैध मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से, दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है।

फिशिंग से महासागरों में जैव विविधता, समुद्री संसाधनों और उन मछुआरों की आजीविका को भी भारी खतरा होता है श्रोताओं, जो कि नियमों का पालन करते हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं समीर का लिखा गीत, प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज।

श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आप मुझे अच्छे लगने लगे अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल सोना मोहपात्रा की आवाजें कुमार का लिखा गीत विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। सुनना नहीं भूलिएगा।

अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा मुझे यानी पूजा नारानिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajnon ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वी रेडी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

इसके बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीक हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

लगातार सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं, कार्यक्रम होगा हेलो हजारीबाग। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी संगीत में भी श्रोताओं को और जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, आदाब अशोक की ओर से। श्रोताओं, आज एक बड़ा ही खास दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस। इस बारे में हम सब कार्यक्रम के दौरान विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर पर्यावरण हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए हवा पानी। ये सच अगर आप कहें तो हवा पानी ही आपको मिलता है इस पर्यावरण से। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा ठीक उसी प्रकार से करें जैसे अपने फैमिली अपने परिवार की देखभाल करते हैं। जी हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, तो सुविचार के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुरुआत हम करते हैं। आज का सुविचार है, सरल जीवन ही सुखी जीवन का मार्ग है। जी हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जीवन जीना जो है बड़े लोगों की बात है, हम सब सामान्य लोग हैं और हमारे ये कर्तव्य बनता है कि हम सरल जीवन जिए। जी हाँ, तो सरल जीवन ही सुखी जीवन का आधार बनेगा। इस सुविचार के साथ एक खूबसूरत गीत प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए। फिर कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हैं, सामग्री है, आप हमारे साथ बने रहिएगा।

कार्यक्रम हेलोजारी बाग में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस पर एक चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों आज है 5 जून और आज मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1972 में घोषित किया गया था। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन। दुर्भाग्य से हम मनुष्य पृथ्वी के इस तंत्र का शोषण कर रहे हैं और ये वही बात है कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को हम काट रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों के जागरूकता को बढ़ावा देना है और प्रकृति की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए दुनिया भर के लोगों, सरकारों और व्यवसायों को प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के इस बार की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस बार का थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर है। इस वर्ष का मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कदम उठाना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी चर्चा, मगर यह चर्चा यहीं पे खत्म नहीं होती है। सवाल यह है कि पर्यावरण को हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ लगातार पिघल रहे हैं उनका पिघलना जारी रहा तो फिर सारी दुनिया का विनाश तय है। ऐसे नेगेटिव थॉट नहीं सोचा करते हैं और हमारे पॉजिटिव सोच के साथ हम सब जो है आगे बढ़ें, यही हमारे लिए बेहतर होगा। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को हम वृक्षारोपण करें और प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर पहल किया है और स्थानीय लोगों के माध्यम से भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सब अवश्य वृक्षारोपण करें और सभी को, एक दूसरे को भी, पास पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित करें कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। दोस्तों एक पेड़ कहा, बुजुर्ग कहा करते थे कि एक पेड़ जो है वह 100 पुत्र के समान होता है, इसलिए पेड़ अवश्य लगाएं और हरे भरे वृक्षों को जिस प्रकार से काटा जा रहा है उनका कटना बंद होना चाहिए, तभी जो है सो पर्यावरण हमारा जो है सुरक्षित रहेगा। एक पेड़ अगर कटता है तो 10 पेड़ लगने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। एक और गीत पेश कर रहे हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम में चर्चा जारी रहेगा।

0: हजारीबाग आप सुन रहे हैं अशोक के साथ आज के इस कार्यक्रम को। दोस्तों आज चलिए तापमान पर एक नजर डालते हैं। आज का न्यूनतम तापमान रहा 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस। आज भी बादल छाए रहने की संभावना है और तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बारिश होने की संभावना थोड़ी बहुत है, कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। शहर में आज मुख्य इवेंट में कहा जाए तो भगवत गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा। कहां पे होगा? झील सेंटर, संध्या 6:30 पर। और श्री मुनि का प्रवचन का प्रस्तुतिकरण बड़ा बाजार जैन मंदिर में किया जाएगा, समय सुबह 8 बजे से। और सोने चांदी के भाव पर हम चर्चा कर रहे थे। सोना प्रति 22 कैरेट है 14,04,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो 2,68,000 रुपए रहा। अब चलिए एक अच्छी खबर हजारीबाग के लिए कुछ समय के लिए देखी गई कि जो चाहते हैं कि भारतीय रेल हजारीबाग के रेलवे स्टेशन का विस्तार हो, बड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें जो है सो यहां से चलें, तो कल राजधानी एक्सप्रेस और दो नई गाड़ियों का परिचालन इधर से किया गया। हालांकि ये सिर्फ एक दिन के लिए किया गया है क्योंकि रूट डाइवर्ट हो गया था। क्या इस खबर में? ये खबर है दैनिक भास्कर की। रूट डाइवर्ट होने से राजधानी समेत तीन लंबी दूरी की ट्रेनें हजारीबाग टाउन स्टेशन से होकर गुजरी और लोगों ने इसका स्वागत किया। जी हाँ, बरौड़ी के पास मालगाड़ी के डीरेल होने के कारण रेलवे प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का रूट बदल दिया। इस तकनीकी बाधा के चलते कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से संचालित करना पड़ा। इसी क्रम में गुरुवार को रांची रेल मंडल की तीन प्रमुख ट्रेनें रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, बड़काकाना पलामू एक्सप्रेस तथा हटिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस हजारीबाग टाउन स्टेशन से होकर गुजरी। वर्तमान में हजारीबाग टाउन स्टेशन से नियमित रूप से केवल तीन एक्सप्रेस ट्रेनें ही गुजरती है जबकि इस रूट का उपयोग मुख्य रूप से मालगाड़ियों के परिचालन के लिए किया जाता है। रेलवे की परंपरागत व्यवस्था के अनुसार जब भी मुख्य मार्ग पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या बाधा उत्पन्न होती है तब लंबी दूरी की ट्रेनों को इस रूट के माध्यम से डायवर्ट किया जाता है। इस बार की स्थिति ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने पर राजधानी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन का परिचालन टाउन स्टेशन होकर गुजारना स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। तो जब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहां से ट्रेनें गुजरती हैं तो स्थानीय जो हमारे नेतागण हैं उन्हें चाहिए कि संबंधित विभाग को यह प्रस्ताव भेजा जाए कि जब वैकल्पिक व्यवस्था से ट्रेनें भेजी जा सकती है तो नियमित रूप से क्यों नहीं चल सकती हैं। जी हाँ, तो उम्मीद है कि ये सुखद एहसास जो कल भर के लिए ही सीमित था वो आगे जल्द ही रात भरी खबर लेकर हमारे लिए जो है सो आएगा। चलिए अब एक और गीत आपको सुनवाते हैं, उसके बाद कार्यक्रम में चर्चा आगे भी जारी रहेगा।
1: मुझे दर्द रहता है नहीं लगती तड़पती हूँ सारी रात जगती हूँ मुझको

कार्यक्रम हेलो हजारे बाग में आपका फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अशोक के साथ। दोस्तों, एक और खबर है कि जल जंगल व जमीन के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक। इस खबर को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। केंद्रीय आदिवासी सरना प्रार्थना सभा जय सरना ट्रस्ट के तत्वाधान में 25 मई से शुरू हुई 11 दिवसीय जागरूकता यात्रा गुरुवार को कटकम संडी स्थित धर्म अट्टा पथल कुदवा सरना स्थल पर संपन्न हो गई। यात्रा का उद्देश्य आदिवासी समाज को नशा मुक्त, शिक्षित, सशक्त बनाने के साथ साथ सरना धर्म, सामाजिक कुरीतियों, हक अधिकार, जल जंगल जमीन के प्रति जागरूक करना था। यात्रा के दौरान कटकम सांडी से लेकर चतरा जिले के विभिन्न पंचायतों चौपारण, तिलैया, बरही सहित कई आदिवासी बाहुल गांवों का भ्रमण किया गया। इस दौरान समाज के लोगों को संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया। यात्रा के समापन के अवसर पर वापसी के क्रम में केंद्रीय आदिवासी सरना प्रार्थना सभा जय सरना ट्रस्ट ने हजारीबाग शहर स्थित भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, संस्कृति संरक्षण का संकल्प भी लिया। यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय अध्यक्ष और धर्म गुरु कृष्णा उरांव ने किया। अधिवक्ता किरण मुंडा के नेतृत्व में अभियान को आगे बढ़ाया गया। मौके पर केंद्रीय सदस्य और धर्म गुरु श्री विजय तिग्गा, महादेव उरांव, आकाश उरांव, आर्यन उरांव सहित कई लोग उपस्थित थे। जागरूकता यात्रा में कुमारी लक्ष्मी मुंडा समेत कई लोगों ने भाग लिया। आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में समाज की एकता, संस्कृति संरक्षण, सामाजिक जागरूकता को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। इस क्रम में ट्रस्ट की किरण मुंडा ने झारखंड सरकार से मांग करते हुए कहा कि आगामी जनगणना फॉर्म में सरना धर्म के लिए अलग कॉलम अंकित किया जाए, इससे आदिवासी समाज की वास्तविक संपूर्ण जनगणना सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर और ऐप के माध्यम से न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम को सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। श्रोताओं चलिए अब हिंदुस्तान अखबार हमारे हाथों में है और इसके कुछ हेडलाइनों पर हम चर्चा करते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा की। श्रमिकों का होगा निबंधन और बनेगा हेल्पलाइन सेंटर। मानसून के बारे में खबर है कि मानसून केरल पहुंच चुका है और 15 से 17 जून तक ये झारखंड में प्रवेश करेगा, तो अच्छी बारिश की संभावना है। आप सब तैयार रहें, तैयारी करके रखें। जी, और प्रणव झा झारखंड से बनाए गए कांग्रेस के राज्यसभा के प्रत्याशी। एक और अच्छी खबर है, प्रकृति का प्रहरी बना हजारीबाग का शहर, वन संपदा में हुई बढ़ोतरी।

जी हाँ, संक्षेप में इसे पढ़ते हैं इस खबर को। हजारीबाग में अब ग्रीन कॉरिडोर की अवधारणा भी परवान चढ़ रही है। हालांकि इसका सीधा संबंध सड़क और संरचना से अधिक है, लेकिन भारत माता चौक से सिंदूर फोरलेन बाईपास जैसी परियोजनाओं के दौरान वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शहर के पार्कों और चौराहों पर बढ़ती हरियाली और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन से शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम चल रही है। और सिंगल यूज प्लास्टिक से बढ़ रहा प्रदूषण, यह भी हजारीबाग सिटी की खबर है। पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक मुक्त शहर के दावों की हकीकत, हजारीबाग की सड़कों और नालियों पर प्लास्टिक जो है बिखरे पड़े हैं। ऐसे हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, और मुखिया ने स्कूल में किया वृक्षारोपण। धनवार पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद ने स्कूल में पौधे लगाकर स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत राजकीय उमावी कोरियाडीह में मुखिया राजेंद्र प्रसाद ने पौधा लगा अभियान की शुरुआत की और ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना वे अपने घरों, सार्वजनिक स्थलों और गांवों में अधिक से अधिक पौधे लगाकर ही कर सकते हैं।

चलिए दोस्तों, अब इतिहास के पन्नों पर भी एक नजर लगे हाथ डाल ही लेते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 5 जून के महत्वपूर्ण घटनाएं। 1989 की बात करें तो ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रोहिल्लाह खुमैनी का देहांत हो गया था। आज के दिन 2001 में शाही हत्याकांड जांच आयोग के एक सदस्य माधवन के इस्तीफे से नेपाल में शाही परिवार की जांच का कार्य अवरुद्ध हो गया था। 2002 की बात करें तो भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था और 2005 में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 2008 की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का भारत सरकार को निर्देश दिया। एलेन परेरा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला और अमेरिका ने भारत व चीन को निगरानी सूची में डाला। 2017 की बात करें तो सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 D1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी। और अब थोड़ी सी जानकारी हम दे दें आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की सूची के बारे में। तो आज के दिन यानी 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। हम उन्हें जन्मदिन की पूरी आकाशवाणी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। 1961 में बात करें तो रमेश कृष्णन भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, उनका जन्मदिन भी आज ही है। 1946 में प्रेम खुड्डू थोंगुन जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। आज के दिन यानी कि 5 जून 1939 को सुब्रमण्यम रामास्वामी

योग्य भारतीय राज्य पुदुचेरी के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। 1901 में आज के दिन बात करें तो गोविंद शंकर कुरूप जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। 1892 की बात करें तो सिकंदर हयात खान जो कि स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशक काल में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। 1879 में एम एन जोशी जो कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। और अब एक गीत हमारे संगीत प्रेमी श्रोताओं के लिए, उसके बाद निधन की खबरें भी हम आपको जरूर बताएंगे।

अब चलिए श्रोताओं, समय बहुत ही कम शेष है। तो आपको बता दें 5 जून को निधन हुए व्यक्तियों की सूची 2020 की बात करें तो वेद मरवाह जो कि दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। 1996 में कुबेरनाथ रॉय जो कि ललित निबंध में विशिष्ट योगदान के लिए माने जाते हैं, उनका निधन आज के दिन हुआ था। और 1942 में मास्टर मदन जो कि प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। और प्रमुख उत्सव की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हमने बताया कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सब संकल्प लीजिए, हम सभी संकल्प लेते हैं कि कम से कम एक वृक्ष आज के दिन अवश्य लगाकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प करेंगे। वृक्ष नहीं लगाएंगे और कचरे नहीं फैलाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये भी संकल्प लेनी होगी। समग्र क्रांति दिवस भी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी इतिहास के पन्नों की पूर्ण जानकारी। और अब दैनिक जागरण में खेल के कुछ खबरों पर जिक्र कर दें। लगातार दूसरा खिताब जीतने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये कहा है फुटबॉल के खिलाड़ी लियोन मेसी ने फीफा विश्व कप के बारे में। उन्होंने कहा है और अफगानिस्तान के विरुद्ध नहीं खेल पाएंगे कोहली। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे की टीम का चयन आज, इंग्लैंड और अफगानिस्तान और आयरलैंड, इंग्लैंड आयरलैंड दौरे के लिए आज होगी टीम की घोषणा। दुनिया की नंबर एक मुक्केबाज बनी जैस्मिन प्रिया शीर्ष 3 में, और सिनर न सही लेकिन फाइनल जरूर खेलेगा इटली का खिलाड़ी। और श्रीलंका को निशंका वो मेंडिस ने दिलाई जीत, और विनेश ने ट्रायल के विरुद्ध याचिका की खारिज। तो ये थी कुछ खेल की खबरें जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, ये था आज की हेलो हजारीबाग का सफर जिसे आपने तय किया अपने दोस्त अशोक के साथ। तो आप हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए, और कार्यक्रम में कुछ सुझाव अगर आप चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं कि इसमें कुछ हम नया करें, तो अपने सुझाव हमें लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग। तो सुनते रहिए आकाशवाणी हजारीबाग FM 102.1 MHz पर और ऐप के माध्यम से न्यूज ऑन एयर के द्वारा। तो बस आज के इस कार्यक्रम में अनुमति दीजिए, आपको एक खूबसूरत गीत के साथ छोड़े

रहे हैं। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है। अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम होंगे हमारे मुंबई केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: Taranga, taranga.
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब।

0: फिराक रहते थे। दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी, एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ज पर। श्रोताओं, 11:48 हुए हैं। कुछ संदेशों के बाद हम पुनः विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में आपको शामिल करेंगे।
1: बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अहमद हुसैन।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: 4 बजे सिर्फ विविध भारती
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
5: After a detailed assessment,
6: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
4: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
7: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आगे हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंडीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं,
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है।

भाई कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, तो यही तो बात है, पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों से दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती, प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंख छलक पड़ती, बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत, हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतरकर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी, नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से। उसके दिल में अजब सा संसार था, एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में, नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाए कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म मोहम्मद।

0: आपने सुना फिर वही दिलाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और ज्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी। अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। जहां दिन भर महुआ पर झूले, रात को चुपड़ते हैं फूल। जहां दिन भर महुआ पर झूल, रात को चुपड़ते हैं फूल। बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी, काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:09 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: Paul when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कहा एक पेड़ मां के नाम अभियान से बढ़ रहा है हरित क्षेत्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल से दो दिवसीय झारखंड दौरे पर, संगठनात्मक बैठकों के साथ राज्य के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सिपाही नियुक्ति परीक्षा के 888 अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत, अदालत ने राज्य सरकार और चयन आयोग को नियुक्ति पर पुनर्विचार का दिया निर्देश। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति ने बस किराए में 18% बढ़ोत्तरी का लिया निर्णय। और श्रीनगर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पी विशाल और ईशान सिंह ने जीते स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और पर्यावरण

0: संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रकृति संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और हरित भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री मरांडी ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए, उसकी देखभाल करे और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखे। हजारीबाग में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरियाली महोत्सव की शुरुआत की गई। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस मॉनसून में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 पौधे लगाए जाएंगे।
1: शुरू के भांति भी इस बार भी 1,00,000 पौधा लगाने का संकल्प किया है। तो सारे लोगों से, आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को मोटिवेट करें कि जो हजारीबाग को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है, सारे लोग एकजुट के होंगे तभी इस मुहिम को पूरा किया जा सकता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम संभव नहीं है।
0: धनबाद मंडल के राजहरा स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुविधा और सहायता के लिए रांची, मुरी तथा लोहरदगा रेलवे स्टेशनों पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अद्यतन जानकारी के लिए सहायता केंद्रों से संपर्क करने की अपील की है। रांची लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज अरगोड़ा चौक स्थित मोहन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल और रक्षा मंत्रालय के उपक्रम मिधानी के सीएसआर सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को 2 दिन से झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे तथा पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया कि दौरे के दौरान संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
2: नितिन नवीन जी 2 दिवसीय सांगठनिक दौरे पर आ रहे हैं। कई बैठकों में जाएंगे, मंदिर का भी उनका भ्रमण है और मंदिर में भी वो मां की दर्शन करेंगे। यहाँ हमारे ऑफिस ब्यूरो से भी बात करेंगे, कोर कमेटी से भी बात करेंगे। लगातार उनके जो प्रवास है संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बड़ा लंबा समय बीता है रांची में, तो हम बहुत उत्साहित हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले दौरे से, और हमें पूरी उम्मीद है कि नई ऊर्जा का संचार करके वो जाएंगे।
0: झारखंड सिपाही नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2015 से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय ने 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को रिक्त पदों के विरुद्ध इन अभ्यर्थियों के दावों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति की कल हुई बैठक में बस परिचालन में आ रही समस्याओं पर चर्चा के बाद सभी रूटों पर बस किराया 18% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे विभिन्न रूटों पर किराए में 40 से 100 रुपए तक की वृद्धि हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बस किराए में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। चतरा सदर अस्पताल में अत्याधुनिक आईसीयू सेवा शुरू कर दी गई है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि आईसीयू सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर उपचार

0: की सुविधा मिल सकेगी।
1: शुभारंभ हो रहा है, इस सहयोग से है यहाँ के नए से सर्जन है और इनकी सिंहता के कारण हम यहाँ पर आईसीयू का नया शुभारंभ किया था। अभी तक हमारे यहाँ शहर में आईसीयू जो गहन चिकित्सा की व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं थी।
0: गढ़वा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ योजनाओं में राशि निकासी के बाद ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर चले गए हैं।
2: की बैठक में मुख्यतः कार्रवाई के लिए कहा गया था, उसी का अनुपालन प्रतिवेदन देखा गया, तो जिस विभाग के स्तर से कमियां पाई गई थी उसको इंगित किया गया कि ये आपके अनुपालन प्रतिवेदन में इस चीज की कमी है और भविष्य में ऐसा नहीं करने पर जिस भी विभाग के द्वारा उसमें कमी पाई जाएगी उस विभाग के पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक बढ़कर 23,441 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। श्रीनगर में आयोजित प्रथम प्रोफेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पी विशाल और ईशान सिंह ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि आयुष राज, सिया शुक्ला, रिधिमा सिंह, नीरज लकड़ा और अद्या लिया ने रजत पदक हासिल किया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कहा एक पेड़ मां के नाम अभियान से बढ़ रहा है हरित क्षेत्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर, संगठनात्मक बैठकों के साथ राज्य के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सिपाही नियुक्ति परीक्षा के 888 अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत, अदालत ने राज्य सरकार और चयन आयोग को नियुक्ति पर पुनर्विचार का दिया निर्देश। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति ने बस किराए में 18% बढ़ोत्तरी का लिया निर्णय। और श्रीनगर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पी विशाल और ईशान सिंह ने जीते स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। अब आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
4: संगीतकार थे रवि, बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं, 1 बजे भी शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं। और हाँ,

शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म दो दूनी चार, बताइए किसकी है आवाज, किसका है संगीत और किसका है गीत।

आप सुन रहे थे, हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर जब पैरों में पॉलीथिन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना

बेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें, लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं। बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नजारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो है, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: मर करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थी जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सबके सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार?

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण।

आओ सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

0: बाजे।
1: अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
2: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
3: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
4: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहां के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा

0: स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बैरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थे भीड़ पर हमला कर दिया।
0: इस हमले के लिए फुल्लर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुल्लर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।

0: पुलिस के निर्दय लाठीचार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहूलुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठीचार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
2: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
0: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठीचार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही,
3: बंद।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस

0: वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण

0: दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण

0: उनका मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी की बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज होने वाली विभागीय समीक्षा बैठक को अचानक स्थगित कर दिया। 25 मई से जारी इस समीक्षा कार्यक्रम को रोककर मुख्यमंत्री आवास में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पार्टी राज्य की दोनों राज्यसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है।
1: दोनों सीटों पर जेएमएम उम्मीदवार तय हो गया। चलिए, वो हम लोग सारे लोग जो झारखंड मोर्चा का पूर्व में भी परंपरा रहा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष
0: कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार प्रणव झा भी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां चुनाव की रणनीति पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतने की रणनीति और गठबंधन के सहयोगियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने दावा किया कि गठबंधन के सहयोगी एकजुट हैं।
2: हमारे झारखंड में फेडरेशन अलायंस की सरकार चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट को मिलाकर हमारा 56 हो रहे हैं और 56 को अगर हम आधा करते हैं तो दोनों सीट एकदम आराम से जीतेंगे।
0: राज्य के डीजीपी तदाशा मिश्रा आज पहली बार पलामू पहुंची। उन्होंने पलामू, लातेहार और गढ़वा के पुलिस कप्तानों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नक्सल और अपराध की समीक्षा की। बैठक के दौरान संगठित अपराध, नक्सल गतिविधियों, नशाखोरी और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। डीजीपी ने नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना की।
3: देख रहे हैं जैसा यहाँ पर स्थिति है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं और तैयारी का स्थिति क्या है, ये सब रिव्यू हो रहे हैं। ये रूटीन मैटर है, कोई विशेष हम लोग जिलावार रिव्यू कर रहे हैं। गढ़वा है, पलामू है, नंदा है, लातेहार, एक एक जिला का समय लगे। काम अच्छी हो रही है, फिर लोग नए हैं, जमीन का जो प्रॉब्लम है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल दर्शा है। ये डिसीजन जो है वो लोग स्तर से लिया जाता है, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पुलिस मानी।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को लगातार दूसरी बार 5.25% पर यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान घटाकर 6.6% और मुद्रास्फीति अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया है।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देशभर में पौधारोपण किया। रांची के धुरवा में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने पौधा लगाकर राज्य में इस वर्ष 2,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों से पौधों की सुरक्षा करने की भी अपील की।
1: लगातार एक रचनात्मक कार्य के तहत अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है एक पेड़ मां के नाम अभियान की उन्होंने शुरुआत की। आज से लेकर के 21 तारीख तक हम 2,00,000 से ज्यादा पेड़ इसे झारखंड प्रदेश में लगाने वाले हैं।
0: जामताड़ा में भी व्यवहार न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण और न्यायिक पदाधिकारियों ने पौधे लगाए। इस मौके पर न्यायाधीश ने कहा कि पर्यावरण संतुलन और प्राणवायु के लिए पौधे को लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा करना भी बेहद जरूरी है। उधर पाकुड़ में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन और वन विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों इस मौके पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज और वन अधिकारियों ने पौधारोपण कर प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। कोडरमा में विधायक डॉक्टर नीरा यादव के चालक राजकुमार यादव की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 3 जून को 8 साल पुराने जमीन विवाद में यह हत्या हुई थी। थाना प्रभारी पर लापरवाही के आरोपों की जांच डीएसपी स्तर से की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।

0: हेलो
1: सहेली।
0: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
0: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर हिसार से, हरियाणा से।
1: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
0: मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, मैं सिलाई करती हूँ।
1: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
0: हाँ जी।
1: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
0: हाँ जी।
1: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
0: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
1: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
1: बहुत प्यारा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, ITI कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से संत प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे उनकी आवाज में। तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में कम निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो सिर ढकते जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी, मैं अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम, हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम, अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो टेंशन फ्री है थोड़ा।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना घर में, तो सबसे पहले सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे है, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भोले मिश्री संगीत सविता, भोले मिश्री गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: हाँ, और दूसरा और सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना। घर में मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ। मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पिया जो है जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुनूंगी गागो साइड खान का, नाचो तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सरगम, अभी तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा,
1: गाना सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपको बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपने मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, परी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल बिना रुके बिना थके
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरी फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके पर निर्भर होती है,
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से
1: जी जी जी
0: तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखी हैं?
1: जी हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
1: और साथ सुबह बहुत है।
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना
1: तो बिल्कुल आती हैं, सब खेलती हैं,
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी। तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा।

0: बिहार चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाग्वर से मिलने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली तो मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो अच्छा। हैप्पी बर्थडे की गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: वो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: हजारों साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और

0: गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने,
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं
1: आकाशवाणी रांची से, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची स्थित लोकभवन परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर ही भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। साहिबगंज के सुखसेना घाट पर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गंगा और डॉल्फिन संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने पर्यावरण रक्षा को जन आंदोलन बनाने की अपील की। देवघर में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने समाहरणालय प्रांगण में लीची का फलदार पौधा लगाया। इस अवसर पर परिसर में कुल 15 फलदार पौधे लगाए गए। उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जिलेवासियों से पर्यावरण को हरा भरा रखने का आग्रह किया। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सिमडेगा महाविद्यालय में आज मेरा युवा भारत, एनएसएस और एनसीसी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण रक्षा की शपथ ली। जागरूकता के लिए पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं भी हुई। संस्था की लेखा अधिकारी सोरिना टेटे ने लोगों से घरों में बिजली और पानी बचाने की अपील की। पाकुड़ के अमरापाड़ा में कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। ग्रामीण बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने, नए कानून के तहत 1,16,00,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने और खनिज ट्रस्ट की 90% राशि प्रभावित क्षेत्र में खर्च करने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे, तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है? भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी।

0: भावना, अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम खाना लगाओ। लो, मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा, मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।
1: ससुर जी तूने

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी

तैयारी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गईं और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुनूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:29 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्मी नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई

0: बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी।
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी
1: सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज,
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए

0: धन्यवाद।
1: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो?
3: मुझे भी ऐसा हो सकता है।
2: क्या क्या सबको नकली मिला? और तुम भी नकली?
3: तुम कैसे हो सकता है?
2: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
4: महाराज की जय।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले। महाराज
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय।
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चल।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देख

कर किसान का मन नाच उठता है, उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं, इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 4:58 हुए हैं अभी आप

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के बक्सी डिब्बा में नवनिर्मित जैव विविधता पार्क का उद्घाटन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांसद सुखदेव भगत और उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में

0: बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रकृति की रक्षा बेहद जरूरी है। खूंटी समाहरणालय परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान शुरू हुआ। इस मौके पर उपायुक्त ने नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने, ठोस गीला कचरा अलग करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ई कचरे का सही प्रबंधन कर पर्यावरण बचाने की अपील की। रामगढ़ के दामोदर नदी घाट पर आज नमामि गंगे योजना के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में अधिकारियों और आम लोगों ने पौधे लगाए। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए आज बैलगढ़िया पुनर्वास स्थल में नए उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। सांसद ढुल्लू महतो और प्रमंडलीय डाक अध्यक्ष राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग और डाक सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में मिलेगा। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और संताल परगना सहित 13 जिलों के लिए तेज हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची और खूंटी सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजधानी रांची में 6 और 7 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले में कोल्हान डायनेमोज ने पलामू वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू वॉरियर्स ने ईशा केशरी के 54 रनों की मदद से 136 रन बनाए। जवाब में कोल्हान डायनामोज ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी सुन रहे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं घातक फिल्म से। सुरेश वाजकर और साधना सरगम की आवाजें हैं। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म हाथी मेरे साथी में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुदरत फिल्म से। इस गीत को गाया है अनीति और किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का।

यादों की बारात, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया आरडी बर्मन ने। सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है इस गीत को।

आंसू बन गए फूल। आप सुन रहे हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गोविंद मुनेस के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी से दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5:30 होने को हैं। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

कार्यक्रम खेती बारी सुने वाले सभी किसान भाई बहन ग्रामीण श्रोता के अपन इस कार्यक्रम में स्वागत हन। साथे साथे प्रणाम जोहार। और हम उम्मीद कर रहे सभी श्रोता खेती बारी कार्यक्रम अपन सभी कामकाज छोड़ के निपटा के जरूर जुड़ गेले होते। तो बतावा किसान भाई बहन कैसन हा, तोर हालचाल कैसन हो, खेती बारी घर दूरा के हालचाल कैसन हो। उम्मीद कर रही है कि सब बढ़िया होते और अपन कामकाज भी बढ़िया से चल रहे होते। तो कार्यक्रम में हम दिन जुड़ गए लिए, तो हम सबसे पहले बता दिए कि कार्यक्रम में हम काका लेके आए ही। तो सबसे पहले आज हम इन बात करवे कि भाई कृषि कार्य और पर्यावरण जो देखा कि एक दूसरा के पूरक हो है, और एक साथे साथे जरूरी संदेश है, मनोरंजन खातिर गीत है और जानकारी भरल भेंटवार्ता भी है। तो और ओकर साथे साथे हम बात करवे कि भाई कुकुट पालन में ग्रामीण महिला कैसे अपन योगदान दे हथी। तो सबसे पहले हमने बात करवे कि भाई कृषि कार्य और पर्यावरण, जैस किसान जो खेती बाड़ी कर हथी और ओकर और पर्यावरण दोनों देखा कि एक दूसरा के पूरक हो है। कृषि से पर्यावरण के सीधा असर पड़ो है ग्रामीण श्रोता, और जहाँ अधिक रसायन के प्रयोग से मिट्टी और जल खराब हो जाए, वहीं प्राकृतिक और पर्यावरण जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य और जल संरक्षण और जैव विविधता से के भी बढ़ावा है। कभी कभी देखल जा है कि कृषि के काम से देखा कि पर्यावरण के बहुत नुकसान भी हो जाए है, चाहे वो पारंपरिक खेती हो या आधुनिक खेती हो। जैसन कि तू देखवा कि अधिक कीटनाशक हो गेलो, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग करे से देखा कि पानी जो जल हो वो खराब हो जाए है, माटी भी खराब हो जाए है, और ज्यादा सिंचाई और जुताई से माटी के जो उपज क्षमता है वो भी कम हो जाए है। साथे साथे तू देखवा कि जंगल के साफ करके जो खेती लायक भूमि बनावल जाए है, और देखा कि धान के खेती में मीथेन के प्रयोग से जो जलवायु में परिवर्तन हो जाए है, और जलवायु में और पूरा पर्यावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन के कारण हो जाए है। और ई अगर हम पर्यावरण के ध्यान में रखकर काम करवे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहते और हमर जो माटी के उर्वरता है वो भी बनल रहते। यही खातिर हम इनके जैविक खाद और

दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: तो देखा अभी हमने सुना लिए इतने बेस गीत, उम्मीद कर रहे हैं कि सभी ग्रामीण श्रोता के गीत पसंद पड़ ले हो, साथ ही जरूरी संदेश भी। और जैसन कि हमने बात करे लिए कि भाई किसी के काम और पर्यावरण एक दूसरे से पूरक रहो है, काहे कि देखा अगर कृषि काम में हमने अगर बेस तरीके से काम न करवे तो ओकर में पर्यावरण पर असर हो है, यही लगी हमने इनके जो भी काम करिए ताकि हमने इनके पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और किसी का काम भी बढ़िया से रहे। और ऐसे देखा ग्रामीण श्रोता अभी जैसन की भीष्म गर्मी पड़ल है और तो ऐसन में तू जानवे कर रहा है कि पानी की समस्या कितना बढ़ जा है, और पानी दिन प्रतिदिन देखा कि जल स्तर भी नीचे चलल जा रहे। ऐसे में हमने के चाहे कि भाई पानी के बढ़िया से ध्यान दे के प्रयोग किए करिए। और ऐसे में है कि किसान भाई बहन भी जो सिंचाई के काम करो थी तो ओकरो में उन लोग के ये भी ध्यान देवे के चाहे कि सिंचाई में हमने की किस तरह से पानी के प्रयोग करिए, और किसान भाई बहन के भाई सिंचाई में भी पानी कौन तरह के रहे के चाहिए ताकि मतलब फसल पौष्टिक रहे, जो साग सब्जी हो वो सब पौष्टिक रहे। काहे कि पानी अभी देखा कि हर तरह के पानी रहे है, और जब भी किसान भाई बहन सब सिंचाई करो हथी तो ओकरा में ये भी ध्यान देवे के चाहे कि हमने के पानी कौन सा पानी से हमने सिंचाई करिए ताकि वो हमने के फसल बढ़िया रहे। यही संदर्भ में हम आज एगो भेंट वार्ता लेके आए हैं कि कृषि के लिए उत्तम जल का चुनाव एकर बारे में बतावे थी ब्रिजेश कुमार। तो बिना कुबेर कर ले हमने सुने ही यही जानकारी। श्रोताओं, हम समय समय पर आपकी मुलाकात एक अनुभवी से करवाते रहते हैं जो आप उनका अनुभव लेके लाभ उठा सके, तो इसी संदर्भ में हम आज आपकी बात करवाने जा रहे हैं ब्रजेश कुमार जी से, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपने खेत में पानी का उपयोग करें। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है ब्रजेश जी, और साथ ही नमस्कार
1: जी। नमस्कार मैडम जौहर।
0: और सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ पे कार्यरत हैं?
1: जी मैं अभी पेयजल स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग में कार्यरत हूँ, वहाँ एक लैब है जल जांच प्रयोगशाला, मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ
0: जी जी
1: एज ए केमिस्ट के रूप में
0: जी। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी सबसे बड़ी समस्या देखा जा रहा है ब्रजेश जी की पानी की समस्या है, कि पानी की वजह से भी बहुत तरह की बीमारियां हो रही है। अच्छा मतलब पानी रहना चाहिए, मतलब जितना भी स्वस्थ हो सके वो पानी से रिलेटिव रहता है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आप ये कार्य कितने दिनों से कर रहे हैं?
1: जी मैं 10 से 12 सालों से वहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, और सब बात पानी की है तो मानव जीवन में पानी का बहुत ही महत्व है।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसमें अभी हम प्रायः देखते आ रहे हैं कि अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतना सारा पॉल्यूशन मतलब गंदगी हो गया है, जो सिंचाई अगर हम करते हैं तो उसमें पौधों का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप पीने के लिए यूज करते हैं जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर से जो आप चापाकल कुआं से पानी पी रहे हैं, उसमें भी इतना सारा कंटामिनेशन आ गया है कि उसमें पीने से भी कई सारी बीमारियां हो जा रही है।
0: बिल्कुल। तो जैसे आप बोले कि खेती बाड़ी में भी पानी स्वच्छ रहना जरूरी है, तो आप बताइए कि खेती बाड़ी में भी स्वच्छ पानी हम लोग किस तरह का रहना चाहिए?

0: जैसे कि पानी अगर आपका एसिडिक हो गया तो उसमें क्या हो गया कि आपका पौधा मर जाएगा, प्रॉपर तरीके से विकास उसका नहीं हो पाएगा। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि एक बार अपने जो पेयजल का जहां से आप पटवन करते हैं तो वहां का एक बार पानी की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जिसको बोलते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो एक जांच करवा लें।
1: हाँ
0: और जांच करवाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी पानी में क्या कमी है या क्या अच्छाई है उसमें। उसके हिसाब से अगर आप पौधे को कोई भी फसल लगाएंगे तो आपका सही विकास उसका हो
1: तो
0: सकेगा।
1: जैसे किसान लोग कोई कुएं से पटाते हैं, कोई चापा नल हुआ, कोई पोखर वगैरह से, तो वो जांच के लिए वो पानी को मतलब ले जाना होगा वहां
0: जी
1: से, उसी का
0: उसपे
1: कैसे ले जाएंगे वो, किस तरह से मतलब कहाँ का पानी लेके जाना होगा?
0: जैसे कि सबसे ज्यादा जो नदी का जो पानी होता है ना वो बहुत साफ होता है।
1: हाँ
0: कुआं का
1: बहता
0: भी,
1: हुआ
0: हाँ,
1: पानी।
0: बहता हुआ पानी बहुत अच्छा माना गया है और साफ हो जाता है। उसका नेचर ही होता है कि बहते बहते वो अब खुद वो साफ हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन जहां अगर आपका जमा हुआ पानी है, जैसे कि तालाब हो गया या और कहीं जहां से बहुत सारी खेती बाड़ी हो रही है, बहुत सारे ज्यादा रसायनों का यूज हो रहा, बह के कहीं स्टोर हो जा रहा पानी, या बहुत नीचे डीप बोरिंग का पानी है उसमें आप पटा रहे हैं पानी को, तो वहां का पानी सैंपल लेने का यही तरीका है, नमूना लेने का, कि अगर तालाब का पानी है तो चार भाग में,
1: हाँ
0: चार किनारे में थोड़ा थोड़ा सैंपल उसको लेके एक बोतल में, साफ बोतल में भर
1: जी
0: के
1: हाँ हाँ
0: और उसको ले सकते हैं।
1: अच्छा
0: और अगर बोरिंग का, डीप बोरिंग का पानी है तो वो थोड़ा सा चला के उसी
1: हाँ
0: बोतल
1: हाँ
0: में थोड़ा सा धो के उसके बाद फिर उसको आप सैंपल ले सकते
1: और
0: हैं।
1: अगर जैसे जमा हुआ पानी, बहुत लोग होते हैं कि आप देखिएगा गांव वगैरह में कि कहीं भी जमा है पानी और उस पानी सिंचाई के लिए है, तो वो सही रहता है कि उसका भी जांच करा के ही करना होगा?
0: जमा हुआ पानी तो देखिए उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा
1: हाँ
0: और उसमें बहुत सारा काई जम जाएगी, बहुत सारा उसमें ये दिक्कत है। तो उसमें अगर पटवन का काम कीजिएगा तो हो सकता है आपका पौधा बहुत जल्दी भी डेवलप हो सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: बहुत उसमें मर भी सकता है
1: जी
0: एसिडिक होने के कारण या बेस होने के कारण, अम्ल या क्षार उसको हिंदी में बोलते हैं, उसके कारण भी आपका ये पौधा मर सकता है।
1: बिल्कुल। तो जांच के लिए ले जाते हैं तो कहाँ पे ये जांच हो सकता है? ये पैजल विभाग में ही?
0: पेयजल विभाग में तो इसका एक लैब है, लेकिन वो ड्रिंकिंग वाटर पेयजल के लिए है,
1: हाँ हाँ
0: और जो खेती बाड़ी के लिए है वो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है,
1: जी
0: या आप डीवीसी का जो एक
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: मंदिर के जो सामने है वहाँ पर, वहाँ प्रयोगशाला है, वहाँ भी ले जा सकते हैं। उससे किसान भाइयों को बहुत अच्छा लाभ होगा,
1: जी
0: ठीक है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: जैसे मिट्टी की जांच होती है तो
0: जी
1: फायदे, तो पानी का भी जांच करके सिंचाई करना बहुत अच्छा होता है। तो ये जब जांच के लिए ले जाते तो कितने दिन में वो जांच करके बता देते हैं कि पानी सही है कि नहीं है?
0: जी इसमें कम से कम 2 दिनों का समय लगता है।
1: 2 दिन का टाइम
0: जी
1: लगता है।
0: उसमें यही रहता है कि जो पीएच होता है वो विद इन 6 आवर के पहले कर लिया जाता है,
1: जी
0: 6 घंटा से पहले। तो उसमें आप जब सैंपल लिए उसके बाद तुरंत ही जांच कर ले, जो अन्य पैरामीटर है उसको भी जांच करके 2 दिनों के अंदर सब,
1: देख,
0: हाँ, मिल जाएगा आपको रिपोर्ट।
1: तो ये जांच हो जाने के बाद मतलब उसी हिसाब से सिंचाई करना है कि खेत में कौन सा
0: आपको
1: फसल लगा है हुआ
0: जी,
1: है?
0: आपको पता लग जाएगा कि उसमें आपको, हमको बेस मिलाना है या एसिडिक केमिकल मिलाना है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ आपका पानी कैसा है। अगर आपका पीएच कम है तो आप उसमें बेसिक केमिकल मिला सकते हैं, इसलिए आपको बहुत, मतलब किसान भाइयों को फायदेमंद होगा
1: बिल्कुल
0: जांच
1: हाँ
0: के
1: हाँ
0: बाद कि आपका फसल नहीं मरेगा,
1: हाँ
0: सही तरह से विकास होगा, फायदा उनके लिए होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखिए सिंचाई के बिना तो खेती बाड़ी हो नहीं सकती है। अगर पानी तो आदमी के लिए भी अच्छा होता है, सही है, और इसके बिना जी नहीं सकता है, वैसे ही पेड़ पौधे भी नहीं जी सकते है। तो इसके लिए स्वच्छ पानी रहना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई पानी भी जांच करा के ही सिंचाई करना चाहिए। और इसके अलावा देखिए अभी जैसा मौसम चल रहा है ब्रजेश जी, इतनी गर्मी है, तो हम लोग जैसे भी किसान भाई बहन पहले ही जुगाड़ लगा लेते कि भाई आगे चल के हो सकता है पानी कम हो, सिंचाई के लिए हम लोग को जुगाड़ करना पड़ता है। अगर बहुत लोग है कि बरसाती पानी के लिए ही डिपेंडेंट रहते हैं, और बहुत लोग के पास है कि बोरिंग है, चापानल है, तो ये जो पानी जो बचाना है, आप हमें बताइए कि किस किस तरह से बचा सकते हैं पानी को।
0: देखिए अगर खेती बाड़ी के नजरिए से देखिएगा तो अभी जो धान का जो ये अभी समय आने वाला है उसमें से इतना ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है कि उससे आप चार फसल सब्जी उगा सकते हैं, लेकिन धान ऐसा ये है कि उसमें पानी की जरूरत होती है। और अगर आपको पानी बचाना है तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि डीप इरिगेशन जो है
1: जी।
0: मतलब छिड़काव जिसको बोलते हैं, तो उसमें से आप यूज करके आप पानी का बचत कर सकते हैं। आप गहरी जुताई करके उसमें नमी बनाए रख सकते हैं खेत और जो बारी है उसको टाड़ को। उसके बाद आप ऐसा पौधा का चयन कर सकते हैं।
1: ये जी आप बता रहे थे कि डीप इरिगेशन की विधि अपनाकर पानी को बचा सकते हैं
0: जी। इसमें क्या होता है कि एक स्प्रिंकलर टाइप का होता है, उसमें आपको पौधे के ऊपर में हम चालू कर देने से घूमते रहता है और पानी में वो पौधे में नमी बनाने में बहुत आसानी होती है, और इससे पौधे बहुत अच्छी तरह से पनपते हैं, बढ़ जाते हैं। डीप इरिगेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि पाइप के माध्यम से हर पंक्ति में लगा हुआ रहता है और उसमें एक छिद्र रहता है जिससे पूरे चलाने पर वो पूरे मतलब फुहारा टाइप का उसमें वो लगने से आपको पूरा पौधे में मतलब नमी आ जाती है।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि खेती बाड़ी में भी अगर हम लोग जैसे तैसे पानी बहा के अगर खेती करेंगे तो वो ज्यादा तो अधिकतर होता है कि पौधा गल जाता है और अनावश्यक घास फूस निकल जाते हैं, तो वो एक मतलब निकाई गुड़ाई वाला समस्या रहता है। और डीप इरिगेशन में है कि आपको ये सब चीज की समस्या नहीं होती है
0: जी। उसमें आपको यही होगा कि बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी, आप कम ही पानी में बहुत ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकते हैं
1: जी।
0: और आपको ये बहुत सालों तक चलता रहेगा, एक बार आप अगर लगा लेते हैं तो बहुत सालों तक इसका यूज करते रहेंगे।
1: तो बहुत अच्छी बात बताए ब्रजेश जी, उम्मीद करते हैं कि सभी किसान भाई बहन अब पानी की जांच करवा के भी खेती करेंगे ताकि उनके सारे फसल मतलब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अच्छे पैदावार हो और पौष्टिक कोई भी फसल उगे जो पौष्टिक उगे। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी ब्रजेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद मैम।
1: तो देखा अभी हमने सुन लिए भेंटवार्ता, कृषि के लिए उत्तम जल का चुनाव एकर बारे में बतावे थलती ब्रजेश कुमार। तो उम्मीद करे है कि सभी किसान भाई बहन ये जानकारी सुनकर जरूर लाभ उठाती और देखा कि अपन सिंचाई में ऐसे ही जल के जांच करके करती ताकि उनकर जो खेती के जो फसल है वो बहुत बढ़िया होते, ओकरा नुकसान नहीं होते। और देखा कि अब हम बात करवे कि भाई जो कुकुट पालन मुर्गी पालन है वो ग्रामीण महिला के ऊपर में का भूमिका रहे। तो देखा कुकुट पालन ग्रामीण महिला के आय के बहुत बढ़िया जरिया है और एकर से वो आर्थिक रूप से बढ़िया और मजबूत हो सकती थी और ये आत्मनिर्भर भी बन सकती थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देखा कि सहायता समूह जो महिला के कुकुट पालन लगी विशेष प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी देव हती, कम लागत और ओकर में बहुत मुनाफा। और देखा कि ये घर के पिछवाड़े अगर थोड़ा सा जगह भी हो ओकरे में कम खर्च में ये अपन जो मुर्गी पालन
2: कर सकती थी और छोटा सा शुरुआत करके। और देखा कि ग्रामीण महिला मुर्गी के दाना पानी देना, टीका कर कराना और उनका देखभाल करना बहुत बढ़िया तरीका से कर ले वह थी अपन घर के कामकाज के साथे साथे। और रसोई से जो खाना बच जा है और खराब अनाज जो मुर्गी के चारा के रूप में भी उपयोग हो जाए है। और गांव के महिला समूह बनाकर आसानी से वैज्ञानिक तरीका से मुर्गी पालन कर सको हथी। और सरकारी योजना के लाभ उठाना और कर सीधा बाजार में बेचकर और ये काम भी वो समूह जो सरकारी समूह है ओकर मदद से लेकर कर ले वह थी। और इस तरह से ग्रामीण महिला अपन जो कुकुट पालन में भूमिका निभाव हती। तो देखा कि महिला हर तरफ जागरूक हो गई थी या चाहे वो घर द्वार के काम कर के साथे साथे वो और खेती बाड़ी के काम हो लो, मुर्गी पालन हो लो, बकरी पालन, गौ पालन सब महिला आराम से करके अपन जीवन यापन बढ़िया से करो हती। एक चीज पर उन लोग निर्भर नहीं रहती। तो देखा कि अब हमने के जाए में अब ज्यादा समय नहीं हो गए उन्हें, तो कहे ना चलते चलते एगो और गीत सुनिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है प्रादेशिक मुख्य समाचार। आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। इस सिलसिले में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत और सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। पूर्व मध्य रेलवे के बरवाडीह गरवा रोड खंड पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 27 घंटे बाद भी अप ट्रैक पर परिचालन बाधित है। मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जबकि वैकल्पिक रिवर्सल लाइन से मालगाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। हादसे के कारण आधा दर्जन पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। रामगढ़ स्टेशन मुख्यालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्र से आए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से राज्य जल्द नक्सल मुक्त होगा। डीजीपी ने भूमि माफिया पर नकेल कसने और लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एसआईटी गठन की बात कही। गुड्डा के कर्पूरी नगर में 3 दिनों से बिजली गुल रहने से गुस्साए लोगों ने आज सरकंडा चौक जाम कर दिया। स्थानीय निवासियों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही और छोटा ट्रांसफार्मर लगाने का आरोप लगाया। बिजली सहायक अभियंता सुरेंद्र गुप्ता के आश्वासन और तत्काल ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाने के बाद जाम हटाया गया। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आज नशाखोरी के खिलाफ 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के सैफ उमर और सीआईपी के डॉक्टर संजय कुमार मुंडा ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुन रही आप सभी बहनों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। बहनों, मौसम है गर्मी का, ऐसे में हर कोई पेड़ों की शीतल छांव में थोड़ी सी ठंडक पाना चाहता है। मानव हो या अन्य जीव जंतु, सभी के लिए जरूरी है संतुलित वातावरण। लेकिन वर्तमान में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। बहनों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित परिस्थितियों, कारकों और प्रभावों का योग है पर्यावरण, जो किसी भी जीवित प्राणी के जीवन और उनके विकास को प्रभावित करता है। इन्हें ही संरक्षित करने बचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में आज के वर्तमान समय में असंतुलित पर्यावरण के कारण हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि इसे एक निर्धारित तिथि पर मनाया जाए, बल्कि हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण

को संतुलित रखने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर मानव एक विकसित समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना, भूजल स्तर में भारी कमी, नदियों का प्रदूषित होना, अनियमित मानसूनों के कारण कई प्रकार के संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। इसलिए तो हर साल एक थीम, एक विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए है। इसका तात्पर्य है कि जलवायु संकट का समाधान सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित और सही संबंध स्थापित किया जाए, साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित और संतुलित रखने में सभी की भागीदारी आवश्यक है ताकि भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। बहनों, वर्तमान में हमारे सामने पर्यावरण को लेकर कई सारी गंभीर चुनौतियां हैं, जिनमें से मुख्य हैं जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके प्रभाव के कारण मौसम चक्र में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण कभी सूखा, कभी अत्यधिक बारिश और बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ रही है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण उपजाऊ मिट्टी का बहाव हो रहा है, साथ ही अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के कारण मिट्टी का क्षरण भी हो रहा है। उपजाऊ क्षमता जो है वो घट रही है। शहरीकरण और विकास के नाम पर हो रही जंगलों की कटाई, जिससे वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं और उनके घर भी छिन रहे हैं। कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं वन्य जीव प्राणियों की। औषधीय पौधे भी वनों की कटाई के कारण खत्म हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण भूजल का स्तर लगातार कम हो रहा है। खनिज और ऊर्जा संकट भी हमारे सामने है। प्लास्टिक कचरा, बढ़ती आबादी, कचरों का सही प्रबंधन ना होना, इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए आज समय की मांग है पर्यावरण को संरक्षित करना। इनसे निपटने के लिए हमें व्यक्तिगत और सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर मिलकर कोई ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों, कार्यक्रम में आगे हम कुछ और खास बातों के साथ फिर से हाजिर होंगे। पहले आपको सुनवा रहे हैं ये वार्ता, विषय है महिला शिक्षा ग्रामीण विकास का आधार। वार्ताकार हैं सीमा सहाय।
5: वर्तमान युग में महिलाओं की शिक्षा एवं क्षमताओं का संवर्धन न केवल अपने आप में महत्वपूर्ण है, बल्कि देश के आर्थिक एवं समग्र विकास का एकमात्र एवं सर्वोत्तम तरीका है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। क्योंकि बच्चे की प्रथम शिक्षिका माँ ही होती है, अतः महिला शिक्षा का महत्व द्विगुणित हो जाता है। यह सही है कि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित किए बिना उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना संभव नहीं है। महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति संभव है। महिला सशक्तिकरण होने पर ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र के चहुमुखी विकास में पुरुषों के साथ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इस तरह से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं को बल्कि संपूर्ण समाज एवं देश को लाभ होगा। आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा। दुनिया में आज भी बेटियों को बेटी की तरह ही शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। वर्तमान विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार जरूरी है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार से न केवल आर्थिक स्थिति बढ़ाई जा सकती है, बल्कि मातृत्व और मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकती है। इस तरह से बालिका को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा की अहम भूमिका है। यही नहीं, शिक्षा के बल पर ही ग्रामीण बालिकाएं समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता, भेदभाव, शोषण एवं उपेक्षा जैसे दंशों का डटकर मुकाबला कर सकती है। इस तरह से सामाजिक आर्थिक विकास की राह पर अपने कदम बढ़ा सकती है। वास्तव में ग्रामीण महिलाओं को साक्षर एवं शिक्षित करके ही उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाया जाना संभव है। क्योंकि शिक्षित महिलाएं अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए विकास के विभिन्न आयामों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान देती हैं। यही नहीं, बालिकाएं शिक्षित होकर परिवार के लिए कमाऊपुत बनकर परिवार को गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही ग्रामीण महिलाओं में, ग्रामीण बालिकाओं में सही दृष्टिकोण, सही विचार एवं सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो सकती है। इस तरह बालिका शिक्षा को परिवार, समाज एवं देश के विकास की नींव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति या गलत नहीं होगी। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही स्वतंत्रता के पश्चात पूर्ण साक्षरता प्राप्त हेतु 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकारों में समावेशित किया गया। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील, आंगन पाठशाला जैसे अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को संचालित कर रही है। इन सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के फलस्वरूप पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर कम हो रहा है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर व मिडिल स्तर पर बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है। शिक्षा के प्रसार प्रचार के कारण बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आई है। अतः बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर अभी भी बालकों की अपेक्षा काफी अधिक है, जिसको नियंत्रित करके ही बालिकाओं का भविष्य सुखमय उज्जवल बनाया जाना संभव है। आज भी शिक्षा के बारे में लैंगिक अंतर बना हुआ है तथा निरक्षर महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। महिला साक्षरता एवं शिक्षा के मार्ग में अनेक अवरोधक हैं, जिनको दूर करके ही अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम गरीबी एवं निम्न आय स्तर की ग्रामीण महिला शिक्षा के लिए सबसे बड़ा बाधक है। देश की लगभग 26 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इन गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था सर्वप्रथम प्राथमिकता है। सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों एवं कुरीतियों की वजह से भी ग्रामीण बालिका और महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा एवं शिक्षा पर फिजूल खर्ची मानना जैसे तत्व भी ग्रामीण शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बेटी पराया धन है, यह संकीर्ण मानसिकता भी बालिका शिक्षा को हतोत्साहित करती है। इसके अलावा ग्रामीण बालिका विद्यालयों की कमी, विद्यालयों की दूरी, पाठ्यक्रमों में रोचकता का अभाव, घरेलू दायित्व एवं अभिभावकों में जागरूकता का अभाव जैसे तत्व भी बालिका शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुंचाते हैं। ग्रामीण जन बालिका शिक्षा पर व्यय को फिजूल खर्ची मानते हुए बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करके उनके भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं। देश के विकास की कुंजी ग्रामीण बालिका शिक्षा एवं महिला साक्षरता ही है। आज ग्रामीण लड़कियों के प्रति भेदभाव, उपेक्षा एवं दोयम दर्जे के व्यवहार को परिवर्तित करना जरूरी है। इस परिवर्तन के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग, संवेदना एवं सहानुभूति परम आवश्यक है। गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी ग्रामीण महिला शिक्षा में सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ये संगठन महिलाओं में उनकी क्षमता, योग्यता एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण महिला एवं बालिका शिक्षा को प्रोन्नत करके देश पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। किसी भी समाज या देश के विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति, परिवार और समाज के उत्थान में एक साथ उपयोगी भूमिका निभाती है। शिक्षा न केवल हमारे नैतिक विकास में मददगार होती है, बल्कि हमारी भौतिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए भी जरूरी है। वर्तमान युग
4: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता महिला शिक्षा ग्रामीण विकास का आधार। वार्ताकार थी सीमा सहाय।

बहनों, 2026 में आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। रेडियो संचार हमारा और आपका आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसने विकास में अहम भूमिका निभाई है। चाहे शिक्षा हो, सामाजिक सांस्कृतिक से जुड़ी बातें हो, हमारी संस्कृति हमारे धरोहर को बचाने की बात हो, व्यापार हो, कृषि व्यवस्था उत्थान की बात हो, बच्चे, युवा, पुरुष, महिला या बड़े बुजुर्ग, हर उम्र के लोगों को विकास की राह में ले जाने की बात हो, सही और ज्ञानवर्धक जानकारियों का प्रसारण होता रहा है। जहां तक महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की बात हो तो आकाशवाणी की अहम भूमिका रही है। नारी सशक्तिकरण में महिलाओं के उत्थान के बिना सामाजिक बदलाव संभव नहीं था। 90 वर्ष पूर्व एक बड़ी जनसंख्या जो अशिक्षित थी, उन्हें विकास की राह पर ले जाना एक चुनौती थी। ऐसे में रेडियो यानी आकाशवाणी वो माध्यम बना जिसे सुनकर लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई। किसी भी क्षेत्र से जुड़ी बातें हों, लोगों को आकाशवाणी के द्वारा जानकारियां मिलती रहती थी और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक पहल था। बालिकाओं को, महिलाओं को उनके अधिकार, उनकी शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के प्रयास से कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। धीरे धीरे समय बदला और इसका सकारात्मक रूप देखने को मिला। एक परिवार में महिलाओं का शिक्षित होना कितना जरूरी है, ये समझने के बाद नारियों में जागरूकता आई। अगर हम आज की बात करें तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। चाहे वह सेना हो, प्रशासनिक सेवा हो, ग्रामीण विकास हो, स्वास्थ्य सेवा हो, मनोरंजन हो या शिक्षा का क्षेत्र, हर जगह वे अच्छा काम कर रही हैं। सुदूर क्षेत्रों में जहां कोई साधन नहीं था, वहां भी आकाशवाणी की आवाज जन जन तक पहुंची। अंत में यही कहना चाहेंगे, आकाशवाणी संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसने महिलाओं को एक मंच दिया जिसे सुनकर अपनी बातें सकारात्मक रूप में रखने का उन्हें मौका मिला और सशक्तिकरण एवं उत्थान की राह में उनका एक साथी आकाशवाणी भी उनके साथ हमेशा खड़ा रहा और आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। तो बहनों, अब वक्त हो गया है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। अब दीजिए अंजना को इजाजत। इस वादे के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हम हैं राही प्यार के। आपने सुना इस फिल्म का गीत कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। आप सुन रहे हैं बादशाह फिल्म का गीत। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

बागी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाजों में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं काला पत्थर फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है इस गीत को।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:55 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय

0: अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा। राज्यपाल ने लोकभवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले दो दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता वैजनाथ राम ने बताया कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री से दोनों राज्यसभा सीटों पर जेएमएम प्रत्याशी उतारने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है।
1: देखिए, जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े।
0: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महागठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दोनों सीटों पर दावा करने के संकेतों के बीच कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह अटूट है। पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही लेंगे और सभी दल मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगे।
2: सभी लोग सोच समझ करके फैसला लेंगे, और इस संदर्भ में जो बेहतर है वो हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी ही बता पाएंगे, क्योंकि वही लगातार बातचीत कर रहे थे। और प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी की गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, हमारे दोनों जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो चुनाव।
0: इस बीच अब से थोड़ी ही देर बाद रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक दल शामिल होंगे, जहां चुनाव की रणनीति और गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने पर गंभीर चर्चा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। इस सिलसिले में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत और सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि नितिन नबीन के झारखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला झारखंड प्रवास है, तैयारियां चल रही है और बहुत उत्साह है। आप देखेंगे पूरा शहर सज रहा है, लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनका जन्म भी इसी झारखंड रांची में हुआ है, वो बड़े भी पले बड़े भी यहाँ से, और भी उनका निकटता है।
0: हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। रामगढ़ स्टेशन मुख्यालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्र से आए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। कर्नल नीलेश श्रीवास्तव ने कहा कि लंबित समस्याओं को मुख्यालय भेजकर फीडबैक लिया जाएगा।
3: यदि किसी की कोई समस्या थी तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि उनकी जो भी समस्या है वो हम एक ग्रीवांस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे, और यदि वो इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से कंसर्न हो हम उस रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफिस को उनकी समस्या बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो, और इनको कॉन्टैक्ट करके हम फीडबैक लेंगे कि वो रिजॉल्व हुई कि नहीं।
0: राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से राज्य जल्द नक्सल मुक्त होगा। डीजीपी ने भूमि माफिया पर नकेल कसने और लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एसआईटी गठन की बात कही। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची स्थित लोकभवन परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर ही भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
4: लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि भाई एक पेड़ मां के नाम आज से कम प्रारंभ हमें करना चाहिए ताकि पर्यावरण को हम सब लोग बचा सके। पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको हम लोग ठीक, अगर ठीक भी हमसे सब लोगों को करना, हर व्यक्ति का एक योगदान हो सकता है तो पौधा लगा करके हो सकता है।
0: लोहरदगा के बक्सी डिप्पा में नवनिर्मित जैव विविधता पार्क का उद्घाटन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांसद सुखदेव भगत और उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रकृति की रक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से एक एक पौधा लगाने और इस पार्क को संरक्षित रखने की अपील की। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए आज बैलगढ़िया पुनर्वास स्थल में नए उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। सांसद ढुल्लू महतो और प्रमंडलीय डाक अध्यक्ष राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग और डाक सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में मिलेगा।
5: यहाँ पे उप डाक घर नहीं था, बहुत परेशानी होती थी। यहाँ पे हमारे कोयला मंत्री जी आए थे, उस समय हम लोगों ने आश्वस्त किए थे कि बहुत जल्द यहाँ पे उप डाक घर हम लोगों ने खुलवाने का काम शुभारंभ हुआ है। इससे बहुत तरह का लाभ यहाँ के लोगों को पहुंच पाएगा, लोगों का समय का बचत होगा, लोगों को आसानी तरीके से कोई एक साधारण से साधारण लोग वहाँ पे जाकर अपनी हर सुविधा को वहाँ पे जानकारी ले सकता है।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और संताल परगना सहित 13 जिलों के लिए तेज हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची और खूंटी सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजधानी रांची में 6 और 7 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले में कुल्हान डायनेमोज ने पलामू वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू वॉरियर्स ने ईसा किश्ती के 54 रनों की मदद से 136 रन बनाए। जवाब में कुल्हान डायनेमोज ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा। राज्यपाल ने लोकभवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य में अगले 2 दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: झारखंड की फिल्म प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त मंच देने के लिए 26 से 28 जून तक होगा चित्रवट झारखंड फिल्म फेस्टिवल। पूरा आयोजन सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची परिसर में होगा। महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। इसे लेकर डाल्टनगंज में आयोजन समिति के सचिव पुलिन मित्रा ने पत्रकारों से बातचीत की और विस्तार से बताया।
2: मुख्य रूप से झारखंड राज्य स्तरीय है और झारखंड के ही लोग, चार भाषा, यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति, ये सबसे रिलेटेड ही हम लोग को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक सोच, समाज में जो विघटन हो रहा है उसपे रिलेटेड ये सारे मुद्दों को रखते हुए 3 तरह के हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक शॉर्ट स्टोरीज पर जो शॉर्ट कुंडगुरी, इसके अलावा जो झारखंड की जो सभ्यता या यहाँ पर जो हेरिटेज है, ये सब के लिए वित्त चित्र भी हम लोग उसके लिए डॉक्यूमेंट्री दिए, हम लोग मैंने रोजगार फरक भी हो, रोजगार से जुड़े। और मुख्य रूप से झारखंड राज्य स्तरीय है और झारखंड के ही लोग।
1: पलामू में थाना एवं चेकिंग पॉइंट के लिए डायल 112 के तहत 36 नई बाइक दी गई। पुलिस लाइन में समारोह आयोजित हुआ। पलामू के डीआईजी किशोर कौशल एवं एसपी कपिल चौधरी ने बाइक रवाना की। मौके पर डीआईजी किशोर कौशल एवं एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि
3: ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, जिससे कि सघन रूप से गति सुनिश्चित की जा सके। उसी चरण में पहले 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, 2 पहिया वाहन भी उपलब्ध कराए गए, जिसे पलामू पुलिस के द्वारा और उसके गाड़ी जैसे GPS उसमें लगाया गया।
4: 12 बाइक 9 समझ 6 बाइक है, इसी समय में 6 बाइक सुधर रहा है। इसके अलावा जो 10 बाइक है जो हमने पूरे शहर के जो चारों तरफ जो एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, जिनको नया हमने चेकपोस्ट बनाया है, 5 चेकपोस्ट बनाए गए, इससे 5 चेकपोस्ट हर चेकपोस्ट में 2 व्हीकल हमने प्रोवाइड कराया है, जो नई बाइक 2 बाइक हर चेकपोस्ट में। इसके अलावा 2 बाइक उन्हें ट्रैफिक हो रही है, ताकि कोई ट्रैफिक का एक बाइक दस्तर है, सूचना मिलने पर तुरंत कहीं जाम हटाया जा सके।
1: पलामू जिले की हैदरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह एक कंपनी के साइट पर गोलीबारी की योजना बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने विस्तार से मामले पर प्रकाश डाला।
5: हैदरनगर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राहुल सिंह गैंग के द्वारा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है उससे द्वारा लेवी मांगने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है। SDPO हुसैनाबाद के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और एक छापेमारी दल के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा जाने लगा, तो उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जब पुलिस के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया तो उनके पास बैग में पिस्टल रिकवर हुई, जिसमें की 2 9mm की पिस्टल रिकवर हुई थी और इसके अलावा कुछ गोली उनके पास से बरामद हुई। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
1: पलामू जिले की छतरपुर थाना क्षेत्र में चिल्हो खुर्द में पारा शिक्षक उदय सिंह की हत्या उसके साथ ही पारा शिक्षक सुरेंद्र यादव ने ही की थी। हत्या से पहले दोनों ने साथ बैठकर बियर भी पी थी। हत्या का कारण 25,000 के बदले 50,000 रुपया मांगा जाना था। छतरपुर के SDPO प्रशांत कुमार ने पूरे मामले की ब्रीफिंग की।
6: मृतक के पत्नी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसके बेस पे हम लोगों ने FIR दर्ज किया, सुरेंद्र यादव से पूछताछ किया और उसने अपने कन्फेशन में यह बताया। उसके साथ उदय सिंह ने हाथापाई किया था, तो इससे वह बहुत आहत था और इसी कारण उसने प्लान बनाकर इस घटना को कार्य।
1: झारखंड कैडर के वर्ष 2025 बैच के 7 भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक दल ने फील्ड दौरे के तहत पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क का दौरा किया। यहां उन्होंने बाघों के संरक्षण, मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की पूरी जानकारी ली। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:15 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

जय हो। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, समीर की बोल, संगीत साजिद वाजिद का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, कहो ना प्यार है फिल्म से।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम झनकार समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। संध्या के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन एवं संकलन है राजीव कुमार एवं माणिक चक्रवर्ती का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव कुमार।

0: प्रेमी दोस्तों, ये वक्त है उड़ान का, ये जुनून है पहचान का, मैदान पुकारे आज फिर किस्सा लिखो सम्मान का।
1: अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है।
2: नदियों ने सिखाया बहना, पर्वतों ने सिखाया अडिग रहना, पर खिलाड़ियों ने दुनिया को सिखाया है गिरकर फिर से खड़े रहना।
0: जहां धड़कनों की रफ्तार स्टॉपवॉच से तेज होती है, जहां सपनों की ऊंचाई स्कोरबोर्ड से बड़ी होती है, और जहां पसीने की हर बूंद सफलता की हस्ताक्षर बन जाती है,
2: वहीं से शुरू होता है हमारा सफर, जो कल की हार को आज का हथियार बना ले, जो दर्द को भी अपनी रफ्तार बना ले। खिलाड़ी वही कहलाता है जो असंभव को अपना अधिकार बना ले।
0: जी हाँ दोस्तों, खेल की दुनिया की प्रेरक कहानियाँ, मैदानों की गूंज, चैंपियनों का जज्बा और युवा खिलाड़ियों के लिए सफलता का मंत्र लेकर मैं हाजिर हूँ राजीव कुमार,
2: और मैं हूँ माणिक चक्रवर्ती। हौसलों के इस अखाड़े में आप सबका स्वागत है। खेल गतिविधियों के इस नए अंक में आप सबको हमारा नमस्कार।
0: खेलेंगे दिल से और खेलेंगे
2: शान से। चलिए अब बढ़ते हैं उस मिट्टी की ओर, जहां सपने जूते पहनकर दौड़ना सिखाते हैं।
0: रुक करते हैं हमारे पहले पड़ाव ग्राउंड रिपोर्ट का। खिलाड़ी मित्रों, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इस दिन अपने हजारीबाग में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित हुआ करजन ग्राउंड से विशाल साइकिल रैली यात्रा, माइंडसेट और स्पोर्ट्समैनशिप मेरा युवा भारत बैनर के तहत हो रहे इस आयोजन का उद्देश्य था युवाओं में अनुशासन और खेल भावना को जगाकर अपनी फिटनेस में कैसे शामिल करते हैं साइकिलिंग, स्टेमिना, कार्डियो और पैरों की मजबूती के इस सफर को कैद करने पहुंचे करजन मैदान में हमारे सहयोगी माणिक चक्रवर्ती, और तैयार हुई आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।
2: सबसे पहले तो नमस्कार आपको और खेलेंगे शान से विश्वास।
3: नमस्कार, धन्यवाद। मैं रुद्रशेखर, जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत हजारीबाग से। तो जैसा कि आप जान रहे हैं विश्व साइकिल दिवस है, तो इसमें हमारे माननीय खेल मंत्री का आह्वान है कि हर संडे को वैसे संडे ऑन साइकिल मनाया जाता है। हम लोग भूल चुके हैं कि साइकिलिंग कितनी अच्छी व्यवस्था थी, इसके माध्यम से कैसे फिट रहते थे।
2: बिल्कुल।
3: तो अभी साइकिलिंग को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि फिटनेस का रोज आधा घंटा रोज। तो फिटनेस में हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके अलावा साइकिलिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि जहां भी पॉसिबल हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बेसिक फिटनेस के लिए आप साइकिल का यूज करें। जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए एज अ वार्म अप भी है, दोनों चीजें हैं। और अगर फिटनेस से अलग एंगल जो आपने बात किया, तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अभी के समय में बहुत योगदान है। हाँ, यहाँ पे साइकिलिंग में हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ पे जुड़े थे, और ये हमारा करजन ग्राउंड स्टेडियम से लेकर पीटीडब्ल्यूडी चौक तक सभी लोग गए, और ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये हर ब्लॉक और हर गांव में होता है, तो हर जगह हम लोग इसे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मैं रुद्रशेखर, जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत हजारीबाग।
4: मेरा नाम महेश कुमार है। मेरा युवा भारत में मैं एक वॉलंटियर हूँ, जो वर्ल्ड साइकिल डे है, जिसमें आज वॉलंटियर और युवाओं के साथ में मैं साइकिल रैली किया। अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, और भारत को 2030 तक ओलंपिक के क्षेत्र में भी आगे ले जाना है, तो फिटनेस हम सभी युवाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। नशा छोड़े और रोज आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने फिट के प्रति ध्यान दें, तो सचमुच हमारा यह देश स्वच्छ मिशन भारत का एक संकल्प को जरूर पूरा करेगा।
2: आप अपना नाम बताएं।
5: मेरा नाम है किरण कुमारी।
2: कहाँ से आप आई हैं?
5: मार्कम कॉलेज बड़का गांव से हैं।
2: अच्छा।
5: हम रोज साइकिल चलाते हैं आधे घंटे से, मतलब चला के यहाँ आते हैं ग्राउंड।
2: आप अपना नाम बता दें।
6: सुशीला कुमारी है।
2: सुशीला,
6: कॉलेज गांव से। सर बता रहे थे कि आज साइकिल दिवस है, तो हम लगाए।
2: आप अपना नाम बताएं।
7: मेरा नाम सुषमा हंसदा है। मतलब अभी के दौर पे तो प्रदूषण देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है, तो मोटरसाइकिल के वजह अगर सामने या रनिंग के लिए साइकिल का यूज करना चाहिए हम लोग को।
8: रोहित कुमार।
2: रोहित जी, कैसा लगा आज का ये दिवस मना के?
8: अच्छा लगा। साइकिल चलाए स्वस्थ रहे।
2: साइकिल चलाए और स्वस्थ रहे,
9: बहुत अच्छा लगा। फिट है तो हिट है। साइकिल चलाइए और फिजिकल फिटनेस बढ़िया रखिए। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको कम देखने को मिलेगा। कंसंट्रेशन पावर बढ़िया रहेगा, ब्लड फ्लो रहेगा बॉडी में। ऑब्वियस है कि आप हर फील्ड में आप जाइएगा तो आपको अच्छा फील होगा। दिन भर आप इनर्जेटिक फील कीजिएगा।
10: अंकित कुमार, हम गिदौर प्रखंड चैतरा जिला से। साइकिल से हमें यह बेनिफिट है चलाने से, हमारा बॉडी फिट रहता है, इससे पेट उट बाहर नहीं निकलता, शरीर मजबूत हो जाता है चलाने से। डेली 7 किलोमीटर चलाते हैं। हाँ, किसी भी फील्ड में आप हैं तो साइकिल चलाना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी फिट उट रहता, पूरा मस्त रहता, दिन भर हेल्दी रहते हैं।
2: तो चलिए मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, और हमारी खेलेंगे शान से,
11: जीतेंगे शान से।
2: शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: कहानी, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी
1: हर जीत की कहानी। I wanna love you in the swimming pool.
2: I wanna love you in the swimming pool.
3: कभी तालाब की लहरों में अपने सपने तैराया करता था, आज उन्हीं सपनों को नई पीढ़ी में जगाया करता हूँ। कल पानी से रिश्ता था एक जुनून के रूप में, आज खेल और समाज दोनों का आईना बन जाया करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रहलाद सिंह हुआ, मैं तैराकी संघ हजारीबाग का सचिव हूँ और बहुत सारे राज्य स्तरीय और नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिताओं का मैं मैनेजर भी रहा हूँ। झारखण्ड का नेतृत्व किया हूँ। मेरा एक जुनून था स्विमिंग करने का। मैं सपना देखा करता था कि मुझे भी दूसरे बच्चों तैरते देखता था, लगता था कि मैं भी तैरूं पानी में। तो यही प्रैक्टिस करते करते हम यही हजारीबाग का झील में स्विमिंग सीखे। लेकिन 2008 से मैं अच्छे तरीके से तैरना सीखा और 2010 ईस्वी में हजारीबाग स्विमिंग एसोसिएशन से जुड़ा। मुझे जुड़ने वाले हमारे अभिभावक, बोलिए हमारे अभी जो संरक्षक है तैराकी संघ के, विपिन बिहारी सिंह, उन्होंने मुझे स्विमिंग में लाया और मुझे दायित्व दिया, सचिव का दायित्व मिला। और शुरुआती दौर में मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। मैं झारखंड में 34वां नेशनल गेम्स था, उस नेशनल गेम्स का मैं झारखंड का मैनेजर बना। सबसे पहला मेरा तोहफा मुझे सरकार ने और एसोसिएशन ने दिया, झारखंड एसोसिएशन ने। 34 खिलाड़ी मेरे अंडर में लड़का लड़की मिला करके थे। नेशनल गेम्स झारखंड में पहली बार हुआ था, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत भव्य तरीके से हुआ था, ऐतिहासिक हुआ था। उसमें 3 मेडल, गोल्ड, रजत और ब्रॉन्ज, 3 मेडल स्विमिंग टीम को मिला था। सरकार ने उन बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया था और कोचेज को भी मिला। मुझे भी बहुत गर्व महसूस हुआ। बड़े बड़े चैनल आकर के हमारा इंटरव्यू किए, मुझे लाइमलाइट में आने का मौका मिला, अखबारों में मेरा नाम प्रकाशन हुआ। हमारे यहाँ स्विमिंग का संसाधन बहुत नहीं है, सीमित क्या नहीं के बराबर है। सरकार के द्वारा यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ स्विमिंग पूल के लिए हम बार बार जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग करते आ रहे हैं। मैं आवेदन के माध्यम से और हमारे जिले के उपायुक्त को जाकर के हम बात करते हैं, मिलते हैं। एक अर्धनिर्मित स्विमिंग पूल है, वो भी कम्प्लीट नहीं है। ऐसे विषम परिस्थिति में तालाब पोखर में तैरे हुए बच्चे को टेक्निक बता करके हमारे कुछ कोचेज हैं यहाँ हजारीबाग में, जो बच्चे जो स्विमिंग पूल में तैरने वाले बच्चे उनको भी पछाड़ करके प्रत्येक साल जूनियर, सब जूनियर और सीनियर प्रतियोगिताओं में मेडल हमारे बच्चे मारते हैं। 1 जून को DRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में सीनियर प्रतियोगिता में भाग लिया 11 बच्चों का टीम, जिसमें टीम का नेतृत्व कर रहे थे गणपति राम और कोच थे हमारे सत्यम कुमार। इनके नेतृत्व में 11 बच्चों की टीम ने मिल करके 13 मेडल जीते हैं। हजारीबाग में कुछ प्रोग्रेस हुआ है, जैसे कि कुछ होटल्स वगैरह में, कुछ स्कूल्स में स्विमिंग पूल बने हैं,
1: जैसे डॉल्फिनोज
3: है, एंजल्स स्कूल है, DPS स्कूल है, स्विमिंग पूल है, या और भी पूल बना, अनंता का पूल बना हुआ है। तो वहाँ जो बच्चे सीखे हैं, तो वहाँ मेरे जो खिलाड़ी, जो जीते हुए खिलाड़ी हैं, जो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, हजारीबाग जिले को बराबर पदक दिए हैं, सब वही लड़का लोग वहाँ कोचिंग दे रहा है, खिलाड़ी लोग। तो अच्छा परिपक्व कोच हजारीबाग में है, हर पूल में उपलब्ध है, जिसके वजह से ये संभव हो पा रहा है। स्विमिंग लोग सब अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई जगह नहीं है, सभी अभिभावक ये करके नहीं कर सकते हैं। बहुत से गरीब तबके के भी लोग हैं जो बड़े स्विमिंग पूल का खर्च को नहीं दे पाते। ऐसा है कि कुछ बच्चे हैं जो गरीब तबके के हैं, बहुत सारे जो स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं, वहाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं इनको कुछ शुल्क कम किया जाए या कोच का शुल्क नहीं लिया जाए, तो लोग उस स्थिति में भी बच्चे को प्रशिक्षित। नेशनल में तो हमारे झारखण्ड में बहुत कुछ मेडल्स आए हैं, लेकिन हजारीबाग को नेशनल में मेडल नहीं आया अभी तक। हम लोग चाहेंगे सरकार के आपके माध्यम से यहाँ हजारीबाग में स्विमिंग पूल उपलब्ध करा दे। मुझे लगता है कि हजारीबाग के प्रतिभावान बच्चे जो हैं, तो निश्चित तौर पर मेडल मारेंगे। प्रखंड स्तर के बच्चों को चाहते हैं हम, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिनमें स्टेमिना ज्यादा है, आदिवासी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूं कि स्विमिंग पूल अगर गवर्नमेंट का बन जाए तो ये मुझे लगता संभव है। अभी हमारी जो सरकार है बहुत खेल के प्रति बहुत उत्साहित है, उन तक बात पहुंचनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये मांग मेरी पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि आप खेल से जुड़िए, स्विमिंग से जुड़िए। आप कोई भी खेल से जुड़ते हैं, बुरी आदत आपका जो है सो पूरा खत्म हो जाएगा। किसी भी गलत संगत में आप नहीं जाइएगा, कोई भी नशा का पान नहीं कीजिएगा। खेल का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। ऑटोमेटिक आप में डिसिप्लिन आ जाएगा, आप में संस्कार आ जाएगा, आप में बड़े को छोटे का आदर करना आ जाएगा। बहुत तरह का बीमारी को आप देखते हैं स्विमिंग के माध्यम से भगाया जा सकता है, तो स्विमिंग जरूर करना चाहिए, स्विमिंग सीखना चाहिए। मेरा सपना है कि नेशनल, मेरा हजारीबाग जिला से बच्चा कोई नेशनल गेम में मेडल जीते।
1: सर ये बताइए कि ट्रिक्स क्या होते हैं तैराकी के?
3: स्विमिंग का बहुत सारा टेक्निक होता है, जिसमें 4 स्ट्रोक होता है स्विमिंग में, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक। ये जब तक कि आप कोच के पास नहीं आएगा आपको नहीं पता चल पाएगा, वो आपको टेक्निक बताएंगे। हम तो माध्यम है, हम उनको तक पहुँचा सकते हैं।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत प्रेरणा लेंगे हम आपके हर जीती कहानी के सेगमेंट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत
1: धन्यवाद मानिक जी, धन्यवाद।
2: और अब मैदान में उतरने वाले नए खिलाड़ियों के लिए हमारा सेगमेंट
0: आज का खेल मंत्र।
2: दूसरों से आगे निकलने से पहले अपने कल से आगे निकलने की आदत डालिए।
0: हार का दर्द कुछ दिनों का होता है, लेकिन कोशिश ना करने का अफसोस उम्र भर।
2: स्कोर बोर्ड दुनिया देखती है, तैयारी भगवान और खिलाड़ी देखते हैं।
0: जीतने वाले बहाने नहीं ढूंढते, वे अगला अभ्यास ढूंढते हैं।
2: खेल केवल पदक नहीं देता, ये व्यक्तित्व को भी स्वर्ण बना देता है, सोना बना देता है। तो रोज मैदान जाइए, रोज खुद को हराइए और एक दिन दुनिया को चौंकाइए।
0: ये था हमारा आज का खेल मंत्र।
2: बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले सेगमेंट की ओर। ये है सीनियर खिलाड़ियों का।
0: सुनो खिलाड़ियों,
2: सुनो खिलाड़ियों, मैदान में आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका खेल नहीं, आपका चरित्र होता है। जीतने से पहले अच्छा इंसान बनना सीखिए।
0: सुनो खिलाड़ियों, जब अभ्यास कठिन लगने लगे तो याद रखिए आपका प्रतिद्वंदी शायद उसी समय अभ्यास कर रहा होगा।
2: सुनिए खिलाड़ी मित्रों, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि लगातार प्रदर्शन और अनुशासन से कमाया जाता है।
0: सुनो खिलाड़ियों, खेल में सबसे बड़ी जीत किसी प्रतिद्वंदी पर नहीं, अपने डर, आलस्य और बहानों पर होती है।
2: सुनो खिलाड़ियों, मैदान बदल सकते हैं, मुकाबले बदल सकते हैं, लेकिन अनुशासन और सच्चा समर्पण होती है हर चैंपियन की असली पहचान।
0: सुनो खिलाड़ियों, ये सुनने को अब आपको आना होगा अगले शुक्रवार।
2: और अब हमारा अगला सेगमेंट है तैयार, जो है
0: खेल टिप्स।
2: अभ्यास से पहले हो लक्ष्य का निर्धारण। बिना लक्ष्य अभ्यास केवल थकान देता है, तरक्की नहीं।
0: मैदान में हर दिन 1% सुधार की सोच रखिए। छोटे छोटे सुधार ही बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं।
2: अपने खेल की वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी कोचिंग है।
0: केवल शरीर नहीं दिमाग को भी ट्रेनिंग दीजिए। मैच जीतने के लिए मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक फिटनेस।
2: साधारण खिलाड़ी से बेहतर खिलाड़ी बनना है तो हर अभ्यास के बाद खुद से सवाल पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा।
0: ज्यादा नहीं, बस बेहतर अभ्यास कीजिए। चैंपियन घंटों से नहीं, सही आदतों से बनते हैं।
2: तो दोस्तों ये था आज का खेल टिप्स, खेल जगत की चुनिंदा सुर्खियां। अगला सेगमेंट सुनिए खेल अपडेट्स।
0: पीएम मोदी ने अहमदाबाद में पहली वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। 4 जून को अहमदाबाद में एक बेहद खास प्रतियोगिता प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत हो गई। बीसीसीआई ने सूर्य कुमार को 2020 की कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 12 जून से हो रही है। फीफा में बेशक भारतीय टीम हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन इस बार भारतीय मूल के 4 खिलाड़ी अलग अलग टीमों में खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल 2026 के समापन के बाद भारतीय खेल जगत की नजरें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीजन पर टिक गई। भारत अफगानिस्तान सीरीज की तैयारियां तेज हो गई। लंबी कूद खिलाड़ी जैस्मिन एल्ड्रिन ने 8 मीटर से अधिक की छलांग लगाकर शानदार वापसी की और एथलेटिक्स में चर्चा बटोरी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने इंडोनेशिया ओपन 2026 में अपने अभियान को आगे बढ़ाया और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का रोमांचक समापन हुआ।
2: छोटे छोटे शहरों की गलियों से निकलकर सपने जब मैदानों में दौड़ते हैं, तब इतिहास सिर्फ महानगरों में नहीं मिट्टी की खुशबू वाले शहरों में भी बनते हैं।
0: याद रखिए, मंजिल का पता शहर का नाम नहीं बताता, हौसलों की ऊंचाई बताती है। चैंपियंस बड़े शहरों में नहीं, बड़े इरादों से पैदा होते हैं।
2: छोटे छोटे शहरों के बड़े बड़े सपनों को हमारा दिल से सलाम। मैदान आबाद रहे, हौसले बुलंद रहे और आपके कदम सफलता की ओर बढ़ते रहे, बढ़ते रहे।
0: अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे नए जोश, नए जज्बे और नई प्रेरणा के साथ।
2: तब तक पसीने को अपनी पहचान बनाइए, संघर्ष को अपना सम्मान बनाइए और खेल की दुनिया में अपना एक नया आसमान बनाइए।
3: हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे।
0: फिलहाल मुझे मानिक चक्रवर्ती
2: और मुझे राजीव कुमार को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार,
2: खेलिए, मुस्कुराइए और कहते रहिए
0: खेलेंगे।

आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन एवं संकलन था राजीव कुमार एवं माणिक चक्रवर्ती का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। 7:46 हुए हैं। पेश है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

झील के उस पार आप सुन रहे इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गीत आनंद बख्शी के संगीत आरडी परमन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं चोरी चोरी फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का।

वो हमारी मधुर स्मृतियों में है। सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:01 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मानगढ़ चौपारण से आप हैं मिथिलेश पांडे, बबीता देवी, नीतू कुमारी, अंशु कुमार पांडे, बाबू सुधांशु कुमार पांडे, अभिषेक कुमार पांडे और परिवार के सभी सदस्य। किरगांव मालीटोला से कल्लू माली, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार। जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से आप हैं मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीस फातमा और शहनाज फातमा। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं अपना देश फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है इस गीत को।

एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

आप सुन रहे हैं फिल्म तीन देवियां का गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत की फरमाइश भेजी है मेन रोड बड़का गांव से नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू, भोला, उनकी मम्मी पापा और बहुत सारे दोस्त। रांची से आप हैं वीर शंकर, आकाश, सतीश, मीनू, मीका और उनके बहुत सारे दोस्त।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की कड़ी में 8:10 हो रहे हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: This is Akashwani. In the special series, 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer is Arjun J. Chaudhary.
2: Vishesh Shrinkhla, Modi Sarkar ke 12 saal ke antargat aaj suniye, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार।

संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए। शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting

0: विविक भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajnon ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची

श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

अनन्या जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

इसके बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।
1: आकाशवाणी हजारीबाग के प्यारे श्रोताओं को राजेश दुबल का नमस्कार।

0: एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है उन गीतों को जिन फिल्मों में निर्माता और सह निर्माता के रूप में इन्होंने फिल्म का निर्माण किया। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म निर्माता और अभिनेता मुकेश भट्ट की। 5 जून 1952 में जन्मे मुकेश भट्ट आज अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

श्रोताओं, मुकेश भट्ट की निर्माता के रूप में पहली फिल्म थी जुर्म, जो 1990 में आई थी और ये फिल्म सफल रही। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे विनोद खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्री, संगीता बिजलानी, शफी इनामदार और शरत सक्सेना।

श्रोताओं, मुकेश भट्ट महेश भट्ट के छोटे भाई हैं और 1986 में उन्होंने मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली विशेष फिल्म्स के नाम से। फिल्म जुर्म के बाद फिल्म आशिकी में उन्होंने गुलशन कुमार के साथ काम किया।

दिल है कि मानता नहीं सड़क जैसी बड़ी हिट फिल्म में भी निर्माता के रूप में काम किया। उन्होंने सभी फिल्में विशेष फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई थी।

0: फिर बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा से दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे निर्माता और अभिनेता मुकेश भट्ट के प्रोडक्शन में बनी फिल्म के गीतों को।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

0: फिर बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

श्रोताओं, इस फिल्म के लिए गीतों को लिखा समीर, फैज अनवर और रानी मलिक ने, और फिल्म के लिए संगीत तैयार किया नदीम श्रवण ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है फैज अनवर ने।

अनुराधा पौडवाल के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से का सफर होता है समाप्त। दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।